0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਸ ਚਾਹਲ ਹੁਣੀ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਲ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ।
1: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई तुसी साडे नाल हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते संपर्क कर सकते हो।
2: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट ए यू या फोन करो 0428895564।
3: ओ आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
4: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
5: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
6: हरमन रेडियो तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे गीत सुनावांगे हरमन रेडियो ते।

लापरवाही बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जद कुक्कड़ शराबी हुंदा है ता ओ शिकरे नू भूल जांदा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा सच कहे परेडे रहे।
1: भाव ए है कि सच कहण वाले बंदे दे टाकरे विच झूठियां गल्लां करन वाला खुशामदी बंदा अपनी थां मुहरली कतार विच बना लेंदा है अते सच्चे बंदे नू कोई नहीं सियाणदा।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
2: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया थे आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: हरेक रस्ता उलझ जांदा है किसी बाजार विच जाके, हरेक रस्ता उलझ जांदा है किसी बाजार विच जाके, बचा के प्यार अपना दस, मैं किस रास्ते गुजर जावा।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे अति गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

0: के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: चाचा सिरे ही लाई जाना। ओए ता हाले उरे रहेगी, सिरे ता होन लाउन लग्या। आंदिया एक कारी के तेरे अर्गा बंदा ब्यूटी पार्लर दे शेव कराउन चलया गया, ते जाके पुछदा किन्ना टाइम लगू। मालक कहना भाई चार पांच बंदे बैठे आ, पहला इना दी हिजामत कर लिए, उदो बाद थोनू मोन दिंदे आ। कहना तुसी नबेड़ लो, मैं फेर आ जाना। दूजे दिन फेर आ गया, आ शेव कराउनी आ, किन्ना टाइम लगू। वो कहना मूहरे तीन क बंदे बैठे आ, बस घंटा क लगू। कहना चल नबेड़ लो, मैं फेर आ जाना। तीजे दिन भतीज फेर आ गया, आज शेव करवानी है जी, किन्ना टाइम लगू। वो कहना बस एक बंदा रहिंदा, 20 मिनट लगने आ, इस तों बाद तुहाडी वारी आ। कहना तुसीं नबेड़ लो, मैं फेर आ जाना। ब्यूटी पार्लर वाला बड़ा हैरान परेशान, वो अपने नौकर नूं कहिंदा गल सुण ओए, तीन दिन हो गए इहनूं आउंदे नूं, पुछ के चले जांदा किन्ना टाइम लगू, वेख के असला किधरों आउंदा। नौकर 5 मिंटां बाद आके रिपोर्ट दिंदा
3: कि
0: शाह जी ये आउंदा पता नहीं किधरों आ, पर टाइम पुछ के सीधा जांदा छोटे घर नूं।
4: अरुण रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
5: ब्याह बारे कश्मीर दी कहावत है कि कुआरे ब्याह करवाउण नूं तरसदे हन ते ब्याहे पछताउंदे हन। सोहणे विचारां दे अंग

0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। अम्मा नालों ती सियाणी रिद्दे पक्के पाए पाणी।
1: ए अखाण उदों वर्तदे हन जदों किसे दी उलाद अपने वडेरियां दे कीते होए चंगे कम्मां नूं विगाड़न लग जावे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: भी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: शरनेक्सस।
1: ईरखा वाले डेनमार्क वाले कहंदे हन कि जिवें लोहे नू जंगाल खांदा है उवें ही बंदे नू ईरखा खा जांदी है। सोने विच

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा,
1: साड़ी ही बिल्ली सानू ही म्याऊं। जदों कोई तुहाड़ा पालिया बंदा ही तुहाड़े उत्ते थौंस दिखावे उदों ए अखाण बोलदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।

मैं सनी हूँ, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ और आप लोग ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 पंजाबी चैनल सुन रहे हैं हामन रेडियो। सुनते रहिए, मेरे पापा भी सुनते हैं।

जनाब सतंदर नूर पंजाबी दे उगे शायर सन जेड़े के कुछ वरे पहला सानू विछोड़ा दे गए ने। उन्हां दी एक खूबसूरत कविता है प्यार ते किताब। लो थोड़े लिए कविता हाजर है परमिंदर सिंह पापा टोए टोए वालों। प्यार करन ते किताब पढ़न विच कोई फर्क नहीं हुंदा। कुछ किताबां दा असीं मुख पन्ना देखदे हां, अंदरों बोर करदियां ने, पन्ने परतदे हां ते रख दिंदे हां। कुछ किताबां असीं रखदे हां सराहणे, अचानक जदों जाग आउंदी है तां पढ़न लगदे हां। कुछ किताबां दा शब्द शब्द पढ़दे हां, वार वार पढ़दे हां ते रूह तक रचा लैंदे हां। कुछ किताबां ते रंग बिरंगे निशान लाउंदे हां, हरेक सत्र ते रीझदे हां ते कुछ किताबां दे सोहल पन्नियां ते निशान लाउणों वी तरहिंदे हां। प्यार करन ते किताब पढ़न विच कोई फर्क नहीं हुंदा।

तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां कल नाम काल दा।
1: इस दा पाव है जेड़ा कम अज हो जावे ओ चंगा हुंदा है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले
2: पंजाबी बोले
0: हरमन रेडियो
2: आस्ट्रेलिया
0: आस्ट्रेलिया।

0: झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लैके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबर का सिलसिला। देश ते विदेश दियां खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: दबी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
1: क्या रियाज़।

बंदे दो तरह दे हुंदे हन, एक ओ जेड़े मनुखी रिश्तियां दी कदर करदे हन, दूसरे ओ जेड़े समाजिक जां पैसे तेले दी तरक्की नूं कीमती समझदे हन। पहली तरह दे भले मानस हुंदे हन अते दूजी तरह दे कमीने। नॉर्मन डुगलस। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो।

आशिक दे फरमान दी खातिर चुनिया शहरिया नौखा नी, तालियों पत्ता तोड़ दवे जिवें इक हवा दा झोंका नी।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टीग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथों मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथों मिलू। मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

सत श्री अकाल जी, माफी चाहुंदा हां कि मैं न्यूजीलैंड तो अज खबरां दा बुलेटिन नहीं पेश कर सकिया। सुनदे रहो हरमन रेडियो, परमिंदर सिंह पापा टोटे वालों सत श्री अकाल।

पंजाबी गीतां दा मेला हरमन रेडियो ते पुराने ते नवे चोटी दे कलाकार माणो आनंद। केड़े केड़े देशां विच की वापर रहा है, हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी

0: मोहम्मद सदीक रणजीत कौर मोहम्मद रफी शिंदा दिलशाद अते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दुपहरे 12 तो 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत
1: जट्टां दे पुत्त पौण बोलियां आ जा नच ला।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: चाचा जी जे तुसी अपने आप नू इन्ना चतुर समझदे हो ना, स्वाद तां ता है जे कौन बनेगा करोड़पति विच जाके करोड़ रुपया जीत के लियाओ।
3: ओए बीबा मैं ना जीत के लिया, मेरा मुंडा लाया, गल तां इक्को ही आ।
4: चाचा जी उन्हें 15 दे 15 सवाल सही दसते।
3: हाँ वो भी बिना किसी लाइफ लाइन दे। अमिताभ बच्चन कहिंदा भई यह पहला शख्स है मेरे प्रोग्राम का जिन्हें बिना किसी जीवन रेखा की मदद तो करोड़ रुपया जितया। भाई धन ने मां बाप जिन्होंने तेन जमया। काका की मैं तेरे पिता जी का नाम जान सकदा?
2: फिर की कहिंदा?
3: कहिंदा जी लाइफ लाइन यूज कर सकदा। कहिंदे केड़ी लाइफ लाइन यूज करनी है? पतंदर ने मेरे नाल गल करनी उचित नहीं समझी, सगो कहना बठिंडे मेरी बेबे नाल गल कराओ जी फोन ते। लो जी फोन बठिंडे सीधा आतरो दे घरे जा वज्जिया। अमिताभ बच्चन कहिंदा आतरो जी मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं।
4: फिर चाची की कहंदी?
3: कहंदी बू मैं मर गई 70 साल का होके हे तक बोली जाना। कहना जी अगली बात थोड़े मुंडे दी आ। मुंडा कहना बेबे 30 घंटा दे अंदर अंदर मेनू मेरा मुंडे का नाम दस दे की आ।
2: फिर चाची की कहंदी?
3: ओ कहंदी पुत 30 सेकंड का बहुत ज्यादा ने, मैं 2 सेकंड के दस दू, पर पहला लंबू नू कहता सही के डब्बिया दिखा के 4 नाम तो भरे केड़े केड़े ने।
4: पर चाचा लाण तो हजे करोड़ रुपए दे, इन्नी गल सुन के तेरा मरन नहीं होया?
3: मरन क्यों नहीं होया भतीज, पर इन्नी गल सोच के फिर सबर कर लिया।
2: केड़ी गल?
3: भाई माण इज्जत सांझा बेइज्जती अपनी अपनी।
5: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग।

युद्ध बारे अफरीका दी एक कहावत अनुसार ना मुक्कण वाला युद्ध बहादुरां नूं भी शर्मसार करता है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: भी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: गोरखनाथ ने पूर्ण भगत नु खूह विचों बाहर कढ लिया। हाथ पैर तेरे किवें वड्डे ने, पूर्ण रो रो के गोरखनाथ नु दस रहा है। दसी भाई खुश दिल खेलिया वालिया की कहिंदा है।

0: पुराने ते नवे इको थां पंजाबी दे चोटी दे कलाकार हर वेले माणो आनंद हरमन रेडियो नाल।
1: सत श्री अकाल जी, ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली एप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: गीतां दी मशीन हरमन रेडियो। हरमन रेडियो
1: सत श्री अकाल जी, मैं हां अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया दे हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़दे हन अते आला दर्जे दी पेशकारी दा आनंद माणदे हन। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रेजेंटर मुफ्त सेवा निभाउंदे हन। तुसी भी साडी मदद कर सकदे हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो अते साडियां अपनियां आईफोन अते एंड्रॉयड दीयां एप्लीकेशंस एप स्टोर तो डाउनलोड करके उस विच सानू सुनो। तुहानू रेडियो दे नाल अखबार, पॉडकास्ट, वधिया वीडियो, लेख, दरबार साहिब अते होर गुरधामां दा लाइव कीर्तन सुनन अते देखण नू मिलेगा। ऐप विचों ही सीधा सुनेहा कल सकोगे। अज ही साडियां एप्स इंस्टॉल करो। धन्नवाद।
2: रोटी हजम नहीं होंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
3: ओ आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानु चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन।

0: के धूप में फंसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
3: चल मनिया मेरा दादा इदा सी, चाचा तेरा दादा बड़ा राधा स्वामी सी।
4: ओ भाई मैं कदों कहना मेरा दादा राधा स्वामी, मैं ता आप मानता और पहुआ सवेरे छकता सी आधिया शामी, पर है बड़ा सिद्धरा सी।
3: अजय सिद्धरा सी, सिद्धी पौनी बोतल टकार लेंदा सी।
4: भाई पौनी बोतल पी के भी अपने आप नु शराबी नहीं मानता सी, उल्टा नाल दे नु मत्ता देंदा हुंदा सी।
5: अज तू हड़ होर ना पी, तू हड़ शराबी हो गया। अगो अगला पुछदा भी रला सिया, तेनू के मैं पता मैं शराबी हो गया। कहदा हुण तू मैनू धुंधला धुंधला जी ना।
6: चाचा जी, जे दारू इनी डफदा सी फिर सिद्धरा केड़े पास्यो सी?
4: बस भाई सारी उम्र साडे दादे नू साइकिल ते चढ़ना नहीं आया।
6: फिर किवें चढ़दा सी?
4: किन्ना किन्ना चिर खाली साइकिल नू सड़क ते भजा के, खब्बा पैर हब ते रख के, सज्जी लत मूर दी डंडे तो घुमा के, फिर किते जाके गद्दी नसीब हुंदी सी। कई बारी ते सारी क्रिया बार बार करनी पैंदी सी।
6: ओ क्यों?
4: भई इन्नी स्पीड ते मगर दादी तो भज के नहीं ना बैठा जांदा सी। सो कई बारी ता सारा सारा पेंडा साडी दादी साइकिल पिछे भज भज के हाफ हाफ के पूरा करदी सी।
6: चाचा जी, थोड़ी दादी भी ना सिद्धरी सी, ओ पहला कैरियर ते बैठ जाया करदी ते बाद च दादा जी टेक ऑफ कर लिया करदे।
4: एयर होस्टेस जी, ये पहला बैठन वाली प्रैक्टिस ना तेरी दादी नू होनी आ, मेरी नू नहीं सी।
6: फिर बोलियो।
3: मैं सोचदा जे थोड़े दादा जी साइकिल ते चढ़न लगे निकालना घालदे सी, फिर उतरन लगे तां खासे खजल हुंदे होणे आ।
4: ना ना ना ना ना, लैंडिंग ते साडे दादा जी दी बोइंग 747 वर्गी स्मूथ सी, उतरन लगे जमा तकलीफ नहीं हुंदी सी, पहले ही रौला पांदे सी। फड़ो फड़ो फड़ो फड़ो फड़ो फड़ो फड़ो।
3: जद तक थाडा बुढ़ा घरे मुड़दा नहीं होना, ओनू फड़न लई सारा टब्बर बीच खड़दा होना।
4: ए तां है ही सी। एक दिन साडे दादा जी दी सेफ लैंडिंग लई मेरी ड्यूटी लग गई।
6: फिर
4: की दरा च सवेर दे खड़े नू लौड़ा वेला हो गया, पर दादा जी कदों पिंड तो ही ना मुड़े। फिर की वेखदा तरकाल संध्या वेले दादा जी हौली हौली साइकिल रोड़ी लियाउण।
6: मगर थोड़ी दादी सी?
4: होर थोड़ी सी। नाले जरूरी तां नहीं कि हर वारी दादी नू नाल घड़ीसणा। मैं दादा जी नू पुछिया, आ की गल भाई, साइकिल पंचर हो गया? नहीं। हवा निकल गई? नहीं। टूब पाट गई? नहीं। पड़ाका पै गया? नहीं। मैं कहा फिर साइकिल दे उपर चढ़ के क्यों नहीं आए? कहना की करा सड़ा, उपर चढ़ने का दाए नहीं लग्या।
3: दसो कैसा पदरपुर सी, साइकिल ते भी दा लाके चढ़दा सी।
4: ओ चल साडे आला ता दा लाके फिर भी गद्दी ते बह ही जांदा सी, तेरे दादे वांगू ता नहीं के सारी उम्र साइकिल कैंचिए चलाउंदा रहा। इन्ना डरपोक सी नीलू एरा दादा, इन्ना डरपोक सी के जिद्दण सुल्तानपुर लोधी मस्या नहाउण जाना हुंदा सी ना, पांच जाने धक्के नाल फड़ के टांगे ते चढ़ाउंदे हुंदे सी ते ओनी पैरी अगले फिर थल्ले ला हुंदे सी।
6: ओ क्यों?
4: सुभा दा गिद्दड़ सी ना, माड़ा जिहा टांगा तेज चलदा सी, नाल ही खौरू पांदा सी, भाई मैनू ला दिओ भी, मैनू ला दिओ, मैं तुर के जाऊंगा, मैं तुर के जाऊंगा। अगले जदे कन्नों फड़ के थले ला दे, चलो उतर थले।
7: गीता दे नाल नाल हासियां दी पटारी भी खुली हुई है,
8: चल रहा है कॉमेडी आवर।
9: What's up, dog? Yeah, bro, this soon in the wind. What's good with it?
10: Watch out, man. Watch out, Judge. He coming, man.
9: Oh, words. They the goat. He all the way down.
10: Yeah, dog. He killing the game.
9: Oh, Judge. Watch out.
11: Damn.

0: वैसे यार हद हो गई, ओए हर एक बंदा कही जांदा के हिंदुस्तान तो बाहरले मुल्क बहुत अगे है।
1: और मैं तेनु दसदा हिंदुस्तान तो बाहरले मुल्क क्यों अगे है, क्योंकि गोरिया ने टेक्निकल तरक्की बहुत कीती है, उत्थे हर बत्ती वाली चौंक च कैमरे लगे है।
0: ओ जे कैमरे लगन दे नाल मुल्क अगे हुंदे है ते असी कैमरे हर चौंक च कल ही लवा दिंदे
1: हां। लै जे हिंदुस्तान च बत्ती वाली चौंकां च कैमरे लगणगे फिर फोटो स्टूडियो वाले अपनियां दुकानां बंद करके काम कोई होर ही लभणगे। लै जे इत्थे बत्ती वाली चौंक च कैमरे लगे न फिर नवी ब्याई जोड़ी ने बत्ती वाली चौंक च खड़ जा करना पोज बना के, उधरों पुलिस वाले ने आके पता की करना
0: है,
2: ओ ब्याह करा के चौंक च की तमाशा दिखाने आ।
1: लाड़ी ने क्या करना, ओ तमाशा जी कादा दिखाने आ, साडा ते नवा ब्याह होया असी ते कैमरे मोरे खड़ के फोटो खिचाने आ।
3: हार्मन रेडियो 24/7।
4: तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है।

लाइफ में और कोई होना हो, तेरा यार तेरे साथ हमेशा एक टांग पे खड़ा रहेगा। लंबी गाड़ी, गर्लफ्रेंड, सब ठीक है तेरे बिना, सब जीरो। मुझे बस तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए और एक चीज और चाहिए, तेरे हाथ का बनाया हुआ पैक भी चाहिए गाके।

0: May I have your attention, please? This is Captain Joseph in command. Welcome on board flight 737 from Delhi to Vancouver, please.
1: Ah, ha, ha, ha, ha. क्या नजारे है इन जम्बू जेट के मैं कहने जहाज है कि पूरा पिंड दा पिंड लेके उड़ी फिरता है जी
2: पोस्ती तो शुरू हो गए ने
1: लो जी जगमोहन जी
2: हाँ जी
1: मैं कहना अपने भाई बंद भी काफी जा रहे हैं
2: हाँ हाँ देखो पंजाब तो काफी लोग जा रहे हैं
1: मैनू तो बहुत ही चा चढ़े हुए इतने गाँव पानी आप करन जाना आप पता इतने काम शुरू कर देना जी
2: की इतने की गाँव जहाज विच
3: ओ बापू दर च खलो के पुब्बा मारे
2: हाँ
3: ओ बापू दर च खलो के पुब्बा मारे बेबे ने जदो मैनू जमे
1: गल नहीं है वो खोते हिंक पे पंजाब दे सारे वो खोते हिंक पे पंजाब दे सारे बेबे ने जदो मैनु जमे जगमोहन जी
2: दीक्षित नहीं सुखो लोग ने अपने पहचान लिया है
4: जगमोहन जी भी
2: सारे लोग
4: जा रहे ने बाहर पोस्टी नाल चल
1: मैं जगमोहन जी
2: देखो पोस्टी जी तुसी प्लीज जहाज रब के वास्ते जहाज भी ना गाओ लोग ने पहचान लिया शोर शराबा शुरू हो जाएगा
4: गाड़ा फिर
2: नहीं बाबा जी प्लीज तुसी इन्हें डिस्टर्ब ना करो तुसी
1: गौन पानी कर चले आप कनेडा उथे मैं थोन पता की सुना स्टेज ते
2: हाँ उथे की सुना
1: कली बजरंग बली
4: पले पले
1: है जी उथे मैं नाले सुना झूठा सूरमा
2: ठीक है बिल्कुल
1: महाकली धूस बादशाह एक मैं नमी लिखी शामो डैन
2: तुसी हुन इस तरह करो सीट अपनी C-17 है तुहाडी तुसी जाके बैठ जाओ ओ एक लेडी बैठी है ना उहदे कोल
1: जगमोहन जी एक ता दीप जी घूरी जांदे और सामने जिहड़ी फिड्डी जी बैठी है
2: हां हां बिल्कुल
1: मैं ओहदे नाल बैठ जांगा
2: बिल्कुल बिल्कुल ओ तुहाडी सीट उत्थे ही ओहदे कोल बैठ
1: जांगा जी मैं के जी थोड़ा नेम के है जी लच्छो बांदरी जी जी व्हाट इज योर नेम जी
2: हाँ
1: आप इकट्ठी जा रहे हैं जी किन्ने
2: माय नेम इज लिंडा
1: ओ लिंडा ए लिंडा थोड़ा नाम है जी
2: व्हाट यू टॉकिंग
1: तुसी अपने दरां दे बाहर लिंडा लिखे होवे रात नु कोई कन्ना पूंझ जवे
5: नो वरिया
1: लिंडा जी आ की खाई जाने हो तुसी
2: This is a hot dog.
1: Hot dog? Oye, oye. Hot dog matlab bhi garam kutte. Linda ji, mera ji karda thonu main pata ki kaha. Mind na ji karyo. I love you ji.
2: You love me. Me too.
1: Me three ji.
2: Lo ji, Adip saab, aap host ne roko. Ye to unu ek Yorkman lady baithi hai. Unu tang kar reha cha.
6: Chalo koi gani nu gaana chadya hai. Usse ja ke sab theek ho jayega.
2: Nahi my god.
4: Nahi janda maara nahi ji banda banda bahut
1: jana. I love you ji.
2: You love me. Me too.
1: Me three ji.
2: Lo ji, Adip saab, aap host ne roko. Ye to एक यॉर्कमैन लेडी बैठी है उन्हें तंग कर रहा चाहिए
6: चलो कोई गनी नु गाना चढ़िया है उससे जाके सब ठीक हो
2: नहीं माय गॉड
4: नहीं जनता माड़ा नहीं जी बंदा बंदा बहुत
2: मिस्टर

0: पहला सेंस जिसी के
1: पार्डन
0: आजादी रेडी जो दारू पीती है नॉन सेंस हो गए
1: बिहेव योरसेल्फ
2: कॉमेडी आवर गीत ते हास्य

0: मुश्किल ए भी है कुगी साहब, जेड़ा मेहनत नाल पढ़दा भी है ओनू नौकरी नहीं मिलदी, क्योंकि साडा देश गरीबी बेरोजगारी अनपढ़ता ऊंच नीच दी दलदल विच तसदा ही जा रहा है। कई देश साडे तो बाद विच पैदा होए ने ते साडे तो किन्ने अगे निकल गए ने।
1: असी लोग वेला नहीं ना विचारदे दीपक राजा जी, सही टाइम ते गलत फैसले लैने। लैक मिसाल सुन।

0: की 35,000 फुट की ऊंचाई से उड़दा एक जहाज क्रैश हो गया, सारिया सवारियां समेत स्टाफ रब नूं प्यारियां हो गई।
1: अच्छा,
0: बस तीन बंदे बजे, एक अपना पंजाबी भाऊ सी, एक जापानी ते एक इंग्लैंड दा। छतरियां खोलियां, थले आके डिगे।
1: अच्छा,
0: थले आके वेखिया के टापू च डिगे।
1: अच्छा,
0: चारे पासे दूर दूर तक पानी निकलन दा रस्ता ही कोई नहीं।
1: ओए होए होए,
0: हुण तीन चार दिन ते किसे तरीके लंघे उन्हां दे औखे सौखे। जापानी दा दिल उदास जिहा हो गया।
1: अच्छा,
0: ओह समाधि ला के बह गया। पंजा सत्तां दिनां बाद उहदा ईष्ट प्रगट होया।
1: अच्छा,
0: कहिंदा बोलो बेटा, की चाहिदा, मंगो जो मंगणा।
1: फिर
0: ओह कहिंदा बाबा जी, मंगणा तां होर कुछ नहीं, बस मैनू तां मेरे बच्चियां कोल, मेरे वतन लै चलो, मेरे घर लै चलो, मेरे लोकां च लै चलो।
1: अच्छा,
0: बाबा जी ने मारिया मंत्र, नाल ही अगला अपने घर पहुंच गया बच्चियां च। इंग्लैंड आले नूं भी स्कीम सुझ गई, ओह भी समाधि ला के बह गया।
1: अच्छा,
0: ते 5-7 दिन बाद उहदे भी बाबा जी प्रगट होए।
1: अच्छा,
0: कहिंदे मंगो बेटा, की मंगणा। बाबे बहुत खुश, ओह कहिंदा बाबा जी कुछ नहीं चाहिदा, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिदी, मैनू तो बस मेरे देश लै चलो, मेरे बच्चियां च, मेरे लोकां च लै चलो।
1: बहुत अच्छे,
0: ओहदे बाबा जी ने भी मारिया मंत्र, नाल ही अगला उथों गायब। दो दिन बाद फिर एहो स्कीम वरती पंजाबी भाऊ ने, बह गए फिर समाधे ला के। 5-7 दिन की भगती तो बाद बाबा जी प्रगट होए, बोल बई पुत्र की चाहिदा। फिर बाबे बड़े परेशान हो तेरे तो, ओह कहिंदा बाबा जी आपां नूं होर कुछ नहीं जे चाहिदा, एवें बोर हो डे आ, ओ दोवें भूतनी ते फेर वापस लै आओ।
2: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
3: 24 घंटे 7 दिन।

0: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गों ते भाभीओ देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबीओ प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियो झगड़े छड़ के दो मिनट हसो
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है
2: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
1: फट्टा
3: मैं डॉक्टरी दे खेतर चो एडिया एडिया मल्ला मारिया हुण तां मेरा नाम पेप्सी बुक च दर्ज होण नूं फिरदा
4: बे मर जाणिया लिमका बुक हुंदी है
3: आहो आहो आ जिहड़ा तूं कहनी आ इहदा बस संती ए अजीबो गरीब घटनावां वापर जांदियां जिंदगी च हुण ला कल दी गल सुन ला
4: हां
3: कल मेरी क्लीनिक दे सामने बंदा एक गड्डी लेके रुकिया गड्डी च उतरिया मेरे कोल आया मेनू कहिंदा डॉक्टर साहब हिचकी नहीं हटदी
4: अच्छा
3: लेंदे ने मैं कन ते दो ठोकियां
4: बे वो क्यों
3: आही गल ओने पुछी सी कहिंदा डॉक्टर साहब मेरा कसूर की है तुसी मेरे चपेड़ा कातो मारियां
4: हां
3: मैं क्या क्यों देखिया मैं क्या देसी नस्का ना हेंग लगे ना फटकरी मैं क्या होगी ना हिचकी बंद लेंदे ने ओने मेरे कन ते दो ठोकियां
4: क्यों
3: कहिंदा डॉक्टर साहब हिचकी मेनू नहीं लगी सी गड्डी च मेरे घर आली बैठी है हिचकी ओनू लगी सी
5: थोड़ा समा रुको हसन लई हरमन रेडियो लेके आया है कॉमेडी आवर गीत ते हासे

0: Pre-cut.
1: पंजाबी फिल्मां वालियां ने होर सब कुछ छड़ता जट सूरमे मौला जट पुत जटां दे जट वैरी जोर जट दा जारी जट दी अणख जटां दी बदला जट्टी दा ललकारा जट्टी दा जट दा गनासा दे जट ते जमीन जट दा नां फिल्मां च पा के जट दा कचूंबर करता। मेरी नवी फिल्म वास्ते जट दा कुछ भी नहीं रह गया, इस करके मैनू अपनी नवी फिल्म दा नां कट्टा जट दा धरना पै गया। जट ते जट्टी दा नां फिल्मां दे विच बिलकुल घस गया। मेरा एक दोस्त पंजाबी फिल्म बना के नां धरन वेले कहिंदा रुपया 14 लाख लग्या, हुण दस मैं की करा, नवी बनाई फिल्म दा टाइटल दस मैं की तरह। मैं इन्हू समझाया भी अपने पंजाबी फिल्मां च जट चलदा है, पर बाकी फिल्मां वाले ने अपने वास्ते जट दा कोई छड्डिया नहीं, पर आपां नूं धरना जट ते जट्टी चुप। एवें लोकां दे पिछे लग के घरनी पट्टी दा, चुप करके नवी फिल्म दा नां धर दे वेल ना जट्टी दा। कहिंदा यार ऊट पटांग जे टाइटल दस के क्यों पोचना मेरी फट्टी हुए, मेरी फिल्म च कोई जट नहीं हैगा, ना बनी कोई जट्टी हुए। मैं इन्हू समझाया ओए बुद्धूआ बाकी फिल्मां च किहड़ा जट हुंदे ने। अजकल प्रोड्यूसर पता की सोचते ने, फिल्म उन्ना चिर सफल न हुंदी जिन्ना चिर जट दा मान नहीं हुंदा। जट दा नां देख के जट फिल्म नूं देख लैंदे, विच जट दा नामो निशान नहीं हुंदा। गल मेरी जद अकल च पई, कहिंदा तैं मेरे ते बहुत आसान कीता, पहला तां वेलना जट्टी दा फिल्म बनाई, फिर कुर्ता जट दा, मुड़का जट दा पजामा ते जट दा मामा, चार नवीआं फिल्मां बनाउण दा झट ऐलान कीता। ऐ पंजाबी फिल्मां वालियो, एवें ना फोक के वहम करो, जट दा नां तुसीं बड़ा कसाया, हुण जट दे नां ते रहम करो, हुण जट दे नां ते रहम करो, हुण जट दे नां ते रहम।
2: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
3: मना मारिया बहुत सौखियां पर मौके ते कोई नहीं खड़दा, आजा दस दिए बीट भी केड़े भज गए।

0: हसन दा समा है हरमन रेडियो ते हासियां दी बारिश, हासियां दी बारिश।
1: लाओ जी वटना मलाउंदे मलाउंदे ते पता नहीं की दिमाग चढ़ गया, मार के दैड़ देने चौंके तो छाल अद नाता जा खड़ गया। ना कोई गल ते ना कोई कारण लग पिया ताया फुमड़ से वाजा मारन, ताया ताया ताया ओए की घर उपाया, ताया कन्न खोल के छोड़ ला, मैं नहीं ब्याह कराना ते मैं साडे बुढ़े ने कराया। ओए साले आ बैठे हैं दिया, जे तेरे बुढ़े ने नहीं ब्याह कराया सी ते तू की जा करदा बुढ़ी नाल मगरों आया सी। तेने गरगट वांगू रंग फड़ गया, चंगी भली नहाई तो ही करदे ते पता नहीं की छप लड़ गया। चंगिया शर्मा लाइया ना, हुण मैं कुड़ी वालिया नू की मुंह दिखाऊंगा, ओ ता पाउणगे दुहाइया। जा जा जा ताया कुड़ी वालिया नू मार गोली, बस पंजी सत्ती दिनी मेरे आई लवा दिया कर माइया।
2: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।

0: ਆਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ
1: ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗ ਕਰਛੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਰਾਂਝੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੇ
2: ਮਾਂ ਕਿਆ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕਸਾ ਕੋਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਟੋ ਸਾਜੇ ਕੁੱਟਣਗੇ
3: ਪੋਟੂ
4: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो आजो ताया जी वेलकम
5: ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू
4: ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे
5: लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो
4: पंजाबी फर्नीचर
5: जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू मंजे धार्मिक फोटो चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू ताया जी
4: लाया था तू मेरी टेंशन दूर कर दी नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा
5: लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
6: रोटी हजम नहीं हुंदी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564
7: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो
8: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो
9: ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

0: अर्बन रेडियो, दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी। पंजाबी
1: एक अफ्रीकी कहावत अनुसार पुत किरली का शिकार भी कर लवे ता बाप उसते मान करता है। चंगे विचारां ले जुड़े रहो अर्बन रेडियो दे नाल।

योग्यता बारे सियाने कहंदे हन कि 100,000 फौजी इकट्ठा करना पर मुश्किल लभना एक जनरल विद्या विचारी तां पर उपकारी।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: योग्यता बारे नीदरलैंड की कहावत है कि फांसी लाउन वाले दे घर चो रस्सी हमेशा मिलेगी। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

निशाना मिथ लिये तां हारा बर्दाश्त करनिया सौखियां हो जांदियां हन, क्योंकि सानू विश्वास हुंदा है कि रस्ता ठीक है, चाल ठीक करन दी लोड़ है। विचार रिंदर कपूर, किताब माड़ा मड़के चौं। होर विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: हरमन रेडियो तमाल बा कमाल।
1: भ्रष्टाचार बारे सियाने कहंदे हन कि जो लोग सरकारी नौकरी तां करदे हन पर लोकां नूं प्यार नहीं करदे, ओह तनखाहां चोरी करदे हन। विद्या विचारी तां पर उपकारी,

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग
1: जेड़े भौंकदे हन ओ वड़दे नहीं।
2: बहुतियां फड़ां जां शेखियां मारन वाले हत्थी कुछ नहीं कर विखाउंदे। बहुते डरावे अते तमकियां देण वाले बंदे कुछ करन जोगे नहीं हुंदे।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा इक्के वा इक्के पा।
1: भाव ए है कि फसल दा चंगा झाड़ लैण लई खेत नू कई वार वा के खाद पौनी चाहीदी है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: Bremen Radio 24/7.
1: एक अफ्रीकी कहावत अनुसार शिकरिया दे देश मुर्गी दा इज्जत मान होएगा, इस तरह दी आस रखना स्याणप नहीं अखवांदा। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: फर्नीचर जी हां पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू मंजे धार्मिक फोटोआं चादरां साइकिल चूल्हे दातिया रंबे कई सब कुछ एथो मिलू ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture
1: रोटी हजम नहीं हुंदी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डूआं लई स्पेशल बेसन मल्टीग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564
2: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो
3: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके
4: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
5: 24 घंटे 7 दिन
6: असी ओही बन जांदे आ जिस वर्गा बनन दी सोचदे आ ते कोशिश करदे आ सावधानी एही है कि जिस वर्गे बनना है उस दे सारे गुण जांच लवो किते बाद विच पछतावा ना रहे अजहे खूबसूरत विचारां संग आवाज दी परवाज सुनदे रहो हरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी

सुनावते सुनाओ अर्बन रेडियो। युद्ध बारे इटली दी कहावत है कि युद्ध दे दिनां विच कौड़ियां दियां कीमतां चढ़ जांदियां हन

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: जदों एक बंदा खिमा करन तो मना कर रहा है तां ओह उन्हां दरवाजियां नूं बंद कर रहा है जिन्हां नूं एक दिन ओहनूं खोलण दी लोड़ पै सकदी है। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: रहम बारे जापान वाले कहंदे हन कि रहम दिली दा विरोध कोई तलवार नहीं कर सकती। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया

मैं मनबीर कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम अज का दिन इतिहास विच। सो सब तो पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें कि असीं हर रोज सांझियां करदे हां तुहाडे नाल पंजाब सिख इतिहास अते देश दुनिया नाल वापरियां

0: जर्मन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: कुड़म विगुत्ता चंगा, गुआंड विगुत्ता मंदा।
3: इस दा पाव है कि संबंधियां नाल विगाड़ता कदी कदी दुखी करदा है, परंतु गुआंड नाल विगाड़ सदा ही दुखी करदा है।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: जापान की एक कहावत अनुसार जे तुसी पैसे नूं अपना नौकर नहीं बनांदे तां इह तुहाडा मालक बन जांदा है। लेखक परमिंदर सोढी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हार्मन रेडियो दे नाल।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी थानू चाहिदा सब इथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवा, चादरा, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलदा गरेवाल चक्की आटा। ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
3: मुआफी चाहुंदे हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणां करके पेश नहीं कर सके।

0: हरमन रेडियो रेडियो तमाल बाकमाल।
1: एक अफ्रीकी कहावत अनुसार बांदर दी पेंट किन्नी भी पीड़ी क्यों ना होवे फिर भी उसकी पूछ जोगी था इस विच जरूर होंदी है। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

जर्मन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग मेहमान वारे ये देश दी कहावत है कि मेहमान मीह वांग हुंदा है जे बहुत ही देर रुक जावे ता खिज पैदा करन लगदा है।

कदे कदे असि एहोजे इंसान नूं बड़ी शिद्दत नाल याद करते हाँ जिस दे सामने साडी हैसियत बस एक फजूल ख्याल तो इलावा कुछ नहीं हुंदी। जो तुहाडे नाल दिल तो गल करे उस नूं कदे दिमाग नाल जवाब ना दिओ। उम्मीद उन्हां तों कीती जांदी है जो उम्मीद दे काबिल हुंदे ने। भरोसे दा साया ते इतबार दा रुख हर जगह नहीं उगता। वह लोग किसे ते नहीं हुंदे जो दोस्त ते रिश्तियां नूं कपड़े दी तरह बदलते ने। दिल विच फर्क आ जावे तां रिश्ते निभाए नहीं घसीटे जांदे ने। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बड़ा कमाल है। दो तरह के इंसानों तो हमेशा दूर रहो, एक मकरूर ते दूसरे मशरूफ। मकरूर अपनी मर्जी नाल गल करते ने ते मशरूफ अपने मतलब लई याद करते ने। कदे किसे दी अंतम यात्रा ते जाओ यह ना समझना कि तुसी उसनु उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो, जबकि यह समझना कि वह लम्मे पिया होया इंसान तुहानू तुहाडी मंजिल दिखाउण लैके जा रहा है। किसी ने एक फकीर नूं पुछया दुनिया च सब दुखी क्यों ने। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि खुशियां तो सब दी झोली च ने पर एक दी खुशी दूसरे दा गम बन जाती है। बहुत मुश्किल नाल करता हां तेरी यादां दा कारोबार, मुनाफा घट है पर गुजारा हो ही जांदा। उम्र कहती है हुण थोड़ा संभलिया जावे, दिल कहता है कुछ नतानियां होर सही। मैं हर रात अपने ख्वाहिशां नूं खुद तो पहला ही सवा देता हां। हैरानी यह है कि रोज सवेरे मेरे तो पहला ही जाग पैंदियां ने। वैसे तो भीड़ बहुत हुंदी सी मेरी महफल च, फिर कि मैं सच बोलता गया ते लोग उठते गए। चेहरा वेख के इंसान पहचानने की कला सी मेरे च। तकलीफ तो तद हुई जो इंसान के कोल चेहरे बहुत हो गए। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के कोल, हर चीज गूगल ते नहीं मिलती। कुटन की चीज है पुछो उस बच्चे तो जो कम करता है रोटी ते लई खिडौणियां दी दुकान ते। खाली पिया है मेरे पिंड का मैदान, एक मोबाइल बच्चों की गेंद चोरी करके लै गया। उलझना भी मिठियां हो सकदियां ने, जलेबी इस गल की चिंता मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख नाल कहा, लोग मरते ने इसलिए मेरा परिवार जिंदा है। सुनिया से लोगों तो के वक्त भी बदलता है, हुण वक्त ने दस्या कि लोग भी बदलते ने। अग दा तां बस नाम बदनाम है, जलते तां इत्थे लोग ने एक दूसरे तो। वक्त ने जरा पासा के पलटिया, घरां दीआं लाइनां च अपणिआं नूं पाया। एहसान लैणा भी पवे तां इहो जिहे इंसान दा लवो जिस नूं चिताउण दी आदत ना होवे, वरना एहसान दा बोझ करज दे बोझ तो कितने ज्यादा भारी हो जाएगा। मुसीबतां दे राह च सुखों नाल चलो, क्योंकि इहो तुहानूं ईश्वर दे करीब लैके जाएगा। मुसीबतां तां मजबूत होण दीआं पौड़ियां ने, हौसला ना हारो जदके खुशी मनाओ कि उस मेहरबान रब ने तुहानूं चुन लिया है। मिलते ने काम भी नसीब वालिआं नूं, हरेक दे हथ विच कित्थे एक खजाना लगता। याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफां तों सिखता है ते अग्गे वधदा है। खुशी च तां अक्सर उह सिखे हुए सबक भी भुल जांदा है। जदों तुहाडा दिल दर्द नाल भर जावे ते अक्खां च हंझू आ जाण, तां हौली हौली उस रब नाल गल कर लिया करो। उह सब जाणदा है, बस तुहाडे मुंह तों सुनना चाहुंदा है। इंसान पहुंच की ख्वाहिश च ना मिलने वाली चीजों के पिछे इंज दौड़ता है जिवें एक बच्चा तितलियां फड़न की ख्वाहिश च घर तो दूर निकल जाता है। ना तो तितलियां मिलतियां ने, ना ही घर वापसी का रस्ता। जो लोग दूसरों को अपने फायदे लिए इस्तेमाल करते ने, वो लोग कदे ना कदे कितने ना कि इस्तेमाल हो ही जाते हैं।
झूट चपा में आकर्षण होवे पर स्थिरता हमेशा सच जी हुंदी है। शब्दां दा वजन तां बोलन वाले दी सोच ते निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जांदा है ते एक शब्द काल बाणी ही व्यक्ति दी शख्सियत दी पहचान हुंदी है। जिंदगी दे धक्कियां तों सब तों बेहतरीन धक्का ओह है जो एक जिहा सबक दे जावे जिस च तुसीं डिगो ते डिग के फिर उठना सिख जाओ। जेकर मेरा ज्ञान मैनूं इंसान तों प्यार करना नहीं सिखाउंदा तां इक मूर्ख मेरे तों हजार गुना ज्यादा वधिया है। कई बार सच कौड़ा नहीं हुंदा, सच बोलन दा अंदाज कौड़ा हुंदा है। असीं सच बोलन दे नाल नाल दूसरिआं नूं जलील करदे हुंदे हां ते इह उम्मीद करदे हां कि साडी जलील होण दी आदत नूं सिर्फ सच ही समझिआ जावे। जिंदगी बहुत कीमती हुंदी है, इस नूं प्यार नाल जीओ। बस रोज इन्ना कम करो, गम नूं डिलीट करो, खुशियां नूं सेव करो, रिश्तियां नूं रिचार्ज करो, दोस्ती नूं डाउनलोड करो, दुश्मनी नूं इरेज करो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब दा ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। फिर मिलांगे दोस्तों एक होर नवी वीडियो विच, तद तक लई रब रखा।

0: चल चलिए एक दुनिया बनाइए, विच होण खुशियां दे रंग, गल्ला करिए दिल वालिया, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलिया दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यूर्स।
1: जत विच अन्ना जोर है ते चढ़दी जवानी है, दौलत शौहरत पल्ले है, मोटे बंदे खानी है, जत किवें अपनी महबूबा नूं तसल्लियां।

0: इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई तुसी साडे नाल संपर्क कर सकदे हो।
1: आर्मन रेडियो 24/7।
2: लेनिन कहंदे हन, 12 विद्वान एक घंटे विच जिन्ने सवालां दे उत्तर दे सकदे हन, उस तों किते वध के सवाल मूर्ख इंसान एक मिंट विच कर जांदा है। विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: युद्ध बारे इटली दी कहावत है कि युद्ध शुरू हुंदा है ता नरक दी संगली खुल जांदी है। सोने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया नाल।

0: रेडियो 24/7।
1: माँ पूर्ति पितापुर कोड़ा बहुत आ नहीं ता थोड़ा थोड़ा।
2: इस दा पाव है कि ती दा सुबा माँ दे सुबा वर्गा अते पुत दा सुबा पियू दे सुबा वर्गा हुंदा।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा हथ कार वल दिल यार वल।
1: इस दा मतलब है कि कम करदियां भी प्यारे रब दा ख्याल रखना।
0: मुहावे अते अखान साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: Carmen Radio
1: 24/7.
2: एक बेल्जियम कहावत अनुसार अनुभव ओ कंगी है जड़ी कुदरत सानू उदो दिंदी है जदों असी गंजे हो जांदे हां। चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाले स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसलों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट ए यू या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो। 24 घंटे 7 दिन
3: हरमन रेडियो।
4: दुनिया भर विच सुने जान वाले हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया नाल जुड़े सारे श्रोतियां नू दलजीत सिंह वालों गुरफते प्रवान होवे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिडनी समय अनुसार शाम दे 5 बज चुके ने ते हुण समां है श्री दरबार साहिब तो आए अज दे मुख वाग दी कथा विचार दा। आओ सरवण करिए सद बलाहारी तिन्हां जे सुनते हर कथा।

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चावर शतर तखत दे मालक राजान राज पहनान पहान देवान देव उपमा महान कोट ब्रह्मंडा दे मालक जागदी जोत जाहर जहोर हाजर हजूर सर्ब कला भरपूर जगत गुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे साज निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो जो अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर जी दरबार साहिब तो पावन मुखवाक जो आप जी ने हुणे हुणे ग्रंथी सिंह पासों सरवण कीता है इस दी विचार प्रारंभ करिए। पंचम पिता शहीदां दे सिरताज शांति दे सोमे धरती नूं धीरज बख्शणहार धरन गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहयो भर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर प्रतख हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे स्वरूप धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जिन्हां बाबत पट साहिबान आखदे ने तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो संसार दे विच प्रगट हुंदिया सारी सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने ब्रह्म नूं पछाण लिया सियाण लिया हिरदे दे विच ही परमेश्वर दा ज्ञान संसार दे विच आउंदिया सारी सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे विच प्रगट होया है। सोरठ रागणी दे विच पंचम पिता शहीदां दे सिरताज धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी पावन मुखवाक

0: सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी शरणी पाईऐ।
1: सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने, आखदे ने कि जीव नूं किस दी शरण विच पैना चाहिदा है। जो सारिया सुखां नूं देण वाला परमेश्वर है, जो सारे जीवां दी प्रतिपालना करन वाला वाहिगुरु है, जो सारिया नूं दाता देण वाला वाहिगुरु है, उस दे सरगुण स्वरूप सतगुरु दे पावन चरण शरण विच पैना चाहिदा है। गुरु ते परमेश्वर इको रूप हन, गुरु परमेश्वर इको जान। भाई साहब भाई गुरदास जी आखदे ने, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं अकाल दा रूप आख रहे ने भाई गुरदास जी। भाई साहब भाई नंद लाल जी आखदे ने, हमू नानक अस्त हमू अंगद अस्त हमू अमरदास अफजलो अमजद अस्त, हमू रामदासे हमू अर्जन अस्त हमू हर गोबिंद अकर्मो एहसन अस्त, हमू अस्त हर राय करता गुरु बदा शिकारा हमा पुष्टरु, हमू हर कृष्ण आमदह सर्बुलंद अज हासिल उम्मीद हर मुश्त मंद, हमू अस्त तेग बहादुर गुरु के गुरु गोबिंद सिंह आमद अज नूरेउ। ओही नूर परमेश्वर दा उसे ने गुरु नानक तो लै करके दस गुरु दे रूप जेड़े ने सरगुण स्वरूप उसे अकाल पुरख वाहिगुरु दे नूर ने जोत ने धारण कीते ने। सतगुर अर्जन देव जी महाराज जी आखदे ने, उसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप जो सतगुरु है उस दी शरण दे

अच्छे ते चंगे लेख लिखे ने उसे नू सत्संग की प्राप्ति होंदी है। सत्संग किसनू आखदे ने? सत दा संग करना, सत दे हजूरी दे विच मन दा रहना, उसनू आखदे ने सत्संग करना। सतगुरु महाराज जी आखदे ने भाई ओही पूरन ने जिन्हां दे हिरदे दे विच परमेश्वर दा नाम वसिया है, ते उन्हां दे ही वड्डे भाग हन, उन्हां नू ही परमेश्वर दी

0: सतगुरु महाराज जी शब्द की संपूर्णता करते ने कहते ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु की चरण शरण विच बेनती है अरजोई है कि हे परमेश्वर जी यही साड़ी अरदास आप जी के चरणों के विच कि महाराज सच्चे पातशाह आप जी दे चित चरण नाम नाम दे विच मन दी बिरती जेड़ी है वह लगी रवे नाम रहा लिवलाई मन दी वृत्ति जेड़ी है वह तदाकार होवे नाम दे विच नाम विच ते मन दी वृत्ति विच कोई फर्क ना होवे यही गुरु रामदास महाराज जी दे चरणा विच अरदास बेनती है। सो हुण जो लड़ीवार मारू राग दे विच कथा चल रही है ओ मनचित बिरतियां नूं एकागर करके सरवण करना करो जी।
1: मारू महला चौथा।
0: चौथे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी मारू राग दे विच एह पावन उपदेश बख्श रहे ने। मारू राग शाड़व जाति दा राग है जिस दे विच छे सुर लगन उस नूं शाड़व जाति दा राग आखदे ने। जिस दे विच सत सुर लगदे ने उस नूं संपूर्ण जाति दा राग आखदे ने। जिस दे विच पंज सुर लगदे ने उस नूं औड़व जाति दा राग आखदे ने। षड़ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत ते निषाद सा रे गा मा पा धा ते नी ए सत सुर ने। मारू राग दे विच सा ते रे कोमल गा शुद्ध मां तीवर पा वर्जित ढा शुद्ध ते नी शुद्ध ये छे सुर मारू राग दे विच लगदे ने। दिन दा तीजे पहर दे विच इस राग नूं गायन करन दी हिदायत है। मारू राग जंग दे मैदान दे विच गायन करन वाला राग है या फिर जदों प्राणी चढ़ाई कर जांदा है उस वेले इस राग नूं गायन कीता जांदा है। उंज कुछ विद्वान जेडे ने उन्होंने मारू राग नूं संपूर्ण जाति दा राग भी मन्निया है। सो चौथे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी मारू राग दे विच पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने।
1: हर अगम अगोचर सदा अविनाशी।
0: सतगुरु महाराज जी बख्शिश करदे ने कहिंदे जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु सारिआं दे मनां नूं हरिया भरिया करन वाला है वह अगम है गमतां तो रहत है। गमतां तो रहत दा भाव है हरेक दी साध संगत जी कोई कैपेसिटी होंदी है लिमिट होंदी है किसी तरह के जेडे साडे शरीर विच इंद्रिय ने अखां ने कान ने नक विच सूंघण दी शक्ति है इन्हां दी कोई हद है बहुत दूर तक इंसान वेख नहीं सकता बहुत दूर दा कोई सुन नहीं सकता इसे तरह ही बहुत दूर तो कोई सूंघ भी नहीं सकता। ये इंद्रियां दी कोई लिमिट है कोई हदबंदी है पर वो परमेश्वर जेड़ा है वो गमता तो रहत है ना उसनु अखां दे नाल वेख्या जा सकता है ना ही कन्ना दे नाल सुनिया जा सकता है ना ही नक राही सूंघ के उदे तक पहुंचिया जा सकता है। वह परमेश्वर ध्यान विच भी नहीं आउंदा अखां बंद करके लोकी बैठदे ने काफ़ी लंबा समा पर वह परमात्मा किसी के ध्यान विच भी नहीं आउंदा जदों भी वह प्रगट होवेगा अपनी मर्जी दे नाल होवेगा। वह अकाल पुरख वाहिगुरु जो गमता तो रहत है अगोचर इंद्रियां का विशा नहीं है इंद्रियां का वह सबजैक्ट नहीं है जिमें अखां दा सबजैक्ट है वेखना कन्ना दा सबजैक्ट है सुनना इसे तरह ही वो परमात्मा कोई सबजैक्ट नहीं है कोई विशा नहीं है। वो परमेश्वर चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै त्रि भवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन त्रिन कहत त्वे सर्वनाम कथै कवन करम नाम वर्णत सुमत। वो परमेश्वर कोई सब्जेक्ट नहीं है जिदे ते लैक्चर करके ते ओनू हिरदे विच वसाया जा सकता है, नहीं पाही। वो परमेश्वर खुद खुदा है, वह चेतन है, वह सारिया विच व्यापक है, इस करके वह अगोचर है ते नास तो रहत है।
1: सर्वे रव रहिया घाट वासी,
0: वो सारिया दे विच व्यापक हो रहा है। घट घट मैं हरजू बसै संतन कहियो पुकार, जिमी जिमान की बिखै समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। इदा नहीं कि छोटे बच्चे विच ओदी छोटी जोत है ते वड्डे इंसान विच ओदी वड्डी जोत है। इदा नहीं कीड़ी विच छोटी जोत है हाथी विच वड्डी जोत है। इदा नहीं छोटी जोत है जदों बच्चा है जदों जवान हुंदा है, जिवें शरीर वधदा है तिवें जोत वध जांदी है। जे शरीर बुढ़ा हो जाता है तो जोत होर बुजुर्ग हो जाती है या वड्डी हो जाती है, इस तरह नहीं है। वो व्यापक है, वो एक रस है, जिमें दुध दे विच मक्खन व्यापक है। दुध विचों एक बूंद कढ़ के ये नहीं कहा जा सकता कि इस बूंद विच मक्खन नहीं है। वो हर थां ते मौजूद है, वो जर्रे जर्रे विच

0: मेरी ते बुझ जानी है इदा नहीं। अर्थां दा पता होवे अर्थां दा पता ना होवे, बाणी ने दुख दूर करने ने, बाणी ने प्यास बुझाउणी है। बाणी ने ए नहीं वेखना कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई चंगा है, कोई माड़ा है, कोई पुन्नी है, कोई पापी है। बाणी ने साध संगत जी जिथों जिथों बाणी ने, बाणी दी आवाज़, बाणी दी धुनी ने आकाश विच पसरना है, उत्थे उत्थे तक सारे जीवां दी कल्याण करनी है। पशु परेत मुगद को उतारे, पाहण पार उतारे, पत्थरां नूं उतार दिंदी है तुरकी बाणी। इस करके सारियां बाणियां विच्चों श्रोमणी बाणी उत्तम बाणी है।
1: जा जापै किछ किथाहू नाही,
0: किते जे कोई जान लवे ते फिर सत्संग जी जानन दे विच कुछ रह नहीं जांदा, पिछे कुछ बचदा नहीं है। जेड़ा कोई रब नूं जान लवे ते फिर सत्संग जी रब तो परे होर कोई गल है नहीं।
1: ता करता भरपूर समाही,
0: इसे करके ओ करता जो सारिया कारणां नूं करन वाला है, ओ सारिया दे विच भरपूर लबा लब भरिया होया है। इहो जिहा सत्संग जी सूई दे नक्की जिन्नी भी कोई थां है नहीं जिथे परमात्मा दा वासा ना होवे। हरनाक्ष के यही कहिंदा सी ना प्रहलाद नूं कि दस तेरा हरी किथे है, वो तो मैं ही हाँ हर थां ते, जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष इहां हरनाक्ष उहां हरनाक्ष। प्रहलाद कहिंदा सी नहीं पिता जी, वो जले हरी थले हरी इहां हरी उहां हरी, जलस तुही थलस तुही न दस तुही न दिस तुही, तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही तुही, हर थां ते मौजूद है। इस करके ओदे नालों सत्संग जी वख कुछ है नहीं, तो लबा लब सारे स्थाना ते सारे थावां ते

0: हे जन हे गुरसिखा उस परमेश्वर दे चरणा विच अरजोई बेनती करना कर
1: जो सर्व सुखा का दानी है
0: जो सारिया सुखा नू देन वाला है सारे सुख जिस दे कोल है उसे कोल जा करके अपने दुख सुनाउणा कर उसे दे चरणा दे विच अरदास बेनती करना कर
1: जो जिया की सार ना जाने
0: जेड़ा भाई अपने आप दी सार नहीं जानदा जिवें इंसान शीशा वेखदा है शीशे च वेख करके दस्तार सजाउंदा है दाड़ी नूं सवारदा है केसा च कंघा करदा है अपना चेहरा मोहरा वेखदा है इसे तरह ही जदों गुरु दा सिख संगत विच आउंदा है जदों बाणी सुनदा है ते उहदे अंदरले औगुण उसनूं दिसण लग पैंदे ने उहदे अंदरला विहार उहनूं दिसण लग पैंदा है उह अंदरों किस तरह दा है उहदे सनमुख उसनूं आप नूं पता चलदा है नहीं तां जिन्ना चिर गुरु दी प्राप्ति नहीं जिन्ना चिर सत्संग दी प्राप्ति नहीं उन्ना चिर इंसान नूं अपने बाबत पता नहीं लगदा दुनिया बारे बड़ी जानकारी इकट्ठी कीती हुई है इनफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत है हरेक दे बंदे बारे इस नूं पता अपने बारे इस नूं कख भी नहीं पता गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु इस करके सतगुरु महाराज जी आखदे ने भाई जिहड़ा

0: कहना करिए अनजाण है, वह तो अग्ञानी है। ज्ञान की है? अपने बाबत पता होना कि मैं कौन हाँ। जे मैं चोर हाँ तो मैनू पता होना चाहिए है कि मैं चोर हाँ। जे मैं हंकारी हाँ तो ओदा ज्ञान होना चाहिए है मेरे च हंकार है। जे मेरे च काम दे फुरने ने तो इंसान अपने आप नू एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं काम ही हाँ। अपने आप बारे विचार करे कि मेरी उम्र किन्नी बतीत हो चुकी है, किन्ने मेरे च अवगुण ने, कदों मैनू गुरु दे दर्शन होणगे, पता नहीं किन्नी उम्र मेरी रहिंदी है, कदों मैनू बाणे कंठ होवेगी, किस तरह का मेरा जीवन आने वाले समय विच होवेगा, इस दी विचार करे, स्वै पड़चोल करे। ते जेड़ा अपने बाबत विचार नहीं करदा उसनू महाराज अग्ञानी कहिंदे ने। दूजियां बाबत तां बड़ी साध संगत जी किताबां पढ़ पढ़ के ज्ञान रखदा है, अपने बाबत ज्ञान कुछ भी नहीं। अपने अंदरले मन बाबत कोई ज्ञान नहीं है। मन च किहो जे फुरने चल रहे ने, मन च सुपने विच किहो जे फुरने चल रहे ने, मन दे विच किहो जे भैड़े विचार चल रहे ने, अपने बाबत कोई ज्ञान नहीं है। उसनु महाराज सच्चे पातशाह अग्ञानी आखदे ने।
1: मूरख स्यो नह लूज पराणी।
0: सतगुरु महाराज जी आखदे ने भाई जेड़ा मूरख है ना, मुंह नहीं रख सकदा, जिन्हों बोलन दा ही पता नहीं है, बोलना जाने माया मदमाता, मरना चीत ना आवे वाली जिस दी हालत है। सतगुरु महाराज जी कहंदे ने उस मूरख दे नाल लूजना ना कर। जिहड़ा मूर्ख दे नाल लूझना है वह बंदा इस तरह है जिवें अपना भी समा बर्बाद करना होवे। जिहड़ा वड्डा मूर्ख होवेगा वह ही छोटे मूर्ख नाल लड़ेगा। जिहड़े सियाणे हुंदे ने वह इगनोर करदे ने, छड़ जांदे ने, वह अपने बाबत ख्याल करदे ने कि मैं की करना है। वह किसे दे नाल रिवेंज नहीं लैंदे, बदनाम नहीं लैंदे, वह किसे दे मगर नहीं लगदे, वह अपने आप नूं सवारन विच लगे रहिंदे हन।
1: हर जपिए पद निरबाणी हे।
0: सतगुरु महाराज जी आखदे ने हरि अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जपना कर, जिस करके तेरे सारे बंधन जेड़े ने टुट जाणगे।
1: ना कर चिंत चिंता है करते।
0: सतगुरु महाराज जी आखदे ने गुरसिखा तू चिंता ना कर, तू चिंतन कर। वो चिंता अकाल पुरख वाहिगुरु करेगा, जिसने तेनू पैदा कीता है, जिने तेनू रिजक देना है। पहलो दे तै रिजक समाहा, पिछो दे तै जंत उपाहा। उन्हें पहला रिजक बनाया है, उस तो बाद जीवनू पैदा कीता है। इस करके किसी तरह की चिंता मन विच टेंशन जेड़ी है वह ना लेना कर।
1: हर देव जल थल जनता सब तै।
0: जल विच भी ते थल विच भी रहन वाले सारे

0: वो परमेश्वर अचिंत दान दिंदा है। साढ़े चित चेते भी नहीं रहिंदा, इस तरह दियां दातां अकाल पुरख वाहिगुरु साढ़े ताई बख्श दिंदा है। ओ ता अकाल पुरख वाहिगुरु पत्थर दे विच रहन वाले जिहड़े किरम ने न जंत ने छोटे, उन्हां नूं भी साध संगत जी उत्थे पत्थर दे विच रिजक दिंदा है। इस करके तू चिंता ना कर, तू चिंतन करना कर।
1: ना कर आस मीत सुत भाई।
0: सतगुरु महाराज जी आखदे ने भाई जेड़े सुत ने बेटे ने, जेड़े मित्र ने ते जेड़े भरा ने, ये तीन ही रिश्ते इंसान दे बड़े नेड़ले रिश्ते ने, नजदीक दे रिश्ते ने। सतगुरु महाराज जी आखते ने इन्हां दी भी आस जिहड़ी है मन विच ना रखना कर। आस रखनी है ते सिर्फ केवल ते केवल कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आस रखना कर। मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावें सारा रुस जाए, इस तरह दी मन विच भावना रखना कर।
1: ना कर आस किसे शाह व्यवहार की पराई।
0: ते ना ही किसे पराई इंसान दी आस मन विच रखना कर, ना ही किसे मंत्री संतरी दी आस उम्मीद रखना कर। ए उम्मीद ना रख कि एह अफसर जेड़े ने औखे वेले मेरी बांह फड़नगे। आस रखनी है ते केवल परमेश्वर दे नाम दी आस।

0: बगैर इस संसार दे विच जीव दा मददगार जेड़ा है वह कोई भी नहीं है। केवल ते केवल परमेश्वर ही औखे वेले इंसान दी बांह फड़दा है।
1: हर जपिया सारंग पाणी है।
0: इस करके जिसने हिरदे दे विच उस परमेश्वर नूं वसाया है, उस परमेश्वर नूं हिरदे विच वसा जिने सात संगत जी हत्थां दे विच शस्त्र धारण कीते ने, जिन्हें सत्संग जी सार तत् वस्तु नूं सारे शरीरां दे विच अंगां दे विच चेतनता ही दित्ती है, उसे नूं जपना कर।
1: आन दिन नाम जपहो बनवारी।
0: जो बन संसार रूपी जंगल दा वाली मालक है, उसदा नाम रात दिन जपना कर।
1: सब आसा मनसा पूरा थारी।
0: तेरियां सारियां इच्छावां जेड़ियां ने ओ पूरियां

0: होर करन वाला जो परमेश्वर दा नाम है उसनु जपना कर, जिस करके जिंदगी रूपी जड़ी रात है ओ सहज अवस्था दे विच बतीत हो जावेगी।
1: जिन हर सेवया तिन सुख पाया,
0: भाई जिन्हां ने गुरु दी सेवा कीती है उन्हां नु सदी भी सुख दी प्राप्ति हुंदी है।
1: सहज ही हर नाम समाया,
0: सेवा करन वालियां दे हिरदे दे विच सोते सिद्ध परमेश्वर दे नाम दी रौं चलदी है। परमेश्वर दे नाम दा चिंतन अजप्पा जापन विसरै आद जुगाद समाए ए दा

0: जिहड़ा भाई उस परमेश्वर दी शरण विच पैंदा है परमात्मा आप उन्हां दी पत रखदा है। जा करके पुछना करो धर्म ग्रंथां नूं, जा करके पुछना करो पुरातन वेदां नूं शास्त्रां नूं, जो भी साध संगत जी परमेश्वर दी शरण विच आया है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे एह बिरद स्वामी संदा।
1: जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे,
0: जिनू परमेश्वर ने अपनी सेवा दित्ती है ओही भाई सेवादार बनदा है। अपने मर्जी दे नाल कोई सेवा नहीं कर सकदा। जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरन नह जोर, जोर न राजमाल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोई। जिन्हों परमात्मा अमृत वेला बख्श दे ओही उठ सकता है, अपने मर्जी नाल नहीं कोई उठ सकता। जिन्हों परमेश्वर नितनेम दे दवे ओदे नितनेम च कदी नागा नहीं पैंदा। अपने जोर नाल जे कोई चाहे ते नहीं कर सकदा। ए साध संगत जी गुरु दियां दाता ने जिन्हों परमात्मा बख्श दवे।
1: गुर कै शब्द परम भाओ भागै,
0: गुरु दे शब्द नू जप करके हिरदे दा

0: कईयां नूं बोलण दा बड़ा हंकार हुंदा है।
1: किस ही जोर दीवान माया का,
0: कईयां नूं सा संगत जी माया दा बड़ा हंकार हुंदा है, बड़ा हिरदे दे विच उनां दा दबदबा हुंदा है कि साडे कोल बड़ी

0: हे महाराज सच्चे पाशाह कईयां नूं बोलण दा हंकार कईयां नूं माया दा हंकार पर मैनू गरीब नूं आप जी दे नाम दा ही आसरा है। सानू गरीबां नूं महाराज सच्चे पाशाह सिर्फ ते सिर्फ आप जी दी ही टेक है। आप ही सारिया कारणां नूं करन वाले हो, आप ही साडे मालक हो, आप ही निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण न्योटियां दी ओट हो।
1: निमाणे मान करहे तुद भावै,
0: महाराज नूं जे पा जावे ते ओ निमाणियां नूं मान बख्शदा है।
1: होर केती झक झक आवै जावै,
0: जेडे हंकार करदे ने ओ सत्संग जी संसार विच आ करके वार वार जमदे ने, वार वार मरदे हन, इस तरह ही चखा ही मारदे रहंदे ने।
1: जिनका पाख कर तू स्वामी तिनकी ऊपर गल तुद आनी है।
0: जिन्हां दा परमेश्वर पाख कर लवे, जिन्हां दे पिठ पिछे खलो जावे परमेश्वर, उन्हां दी साध संगत जी सारी कीती हुई गल जेडी है ओ सारे संसार भर दे विच कबूल हुंदी है, ओ प्रवाणनीक हुंदी है। जो भी साध संगत जी उन्हां महापुरखां वल्लों बोलिया जांदा है ओ सच हुंदा है। कर्म खंड की बाणी जोर, उन्हां दी बाणी विच उन्हां दी बोली विच जोर हुंदा है। जो भी बोलदे ने ओ सच हो जांदा है, जिन्हां दा परमात्मा पख करदा है।
1: हर हर नाम जिन्नी सदा ध्याया,
0: जिन्हां ने हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी

0: महाराज जी इथे इस पावन शब्द की संपूर्णता करते ने, गुरु महाराज बख्शिश करते ने भाई जेडे हरी अकाल पुरख वाहेगुरु की शरण विच गए ने, जिन्होंने परमेश्वर का नाम जपया है, दास बन करके दासत्व भाव हिरदे विच ग्रहण किया है, उही साध संगत जी संसार विच प्रवाणनीक होए ने, उही साध संगत जी लोक ते परलोक विच उन्हां नूं सुखां दी दात प्राप्त हुई है जिन्हां ने परमेश्वर दे नाम नूं जपया है। सो इत्थे इस पावन शब्द की संपूर्णता, समय दी समाप्ति, पुल चुग दी खिमा।
1: तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर

गुरु प्यारियो गुरु सवारियो तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित हो रही अमृतमई बाणी दी अमृत कथा। अज दी कथा विचार दे प्रोग्राम दी इत्थे समाप्ति दी आजाद चाहुंदा हां। तां कल मिलदे हां जी इस समय, तद तक लई तुसी आनंद मानो। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया तो ब्रॉडकास्ट हो रहे होर प्रोग्रामा दा ते मेनू दियो आजाज। रब रखा। वाहेगुरु जी का खालसा।

0: तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हां तां साडियां गुरु साहबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबां नाल गल्लां करन दा एक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

ओही टोटा नहीं जिथे पंज दरिया वेंदे सन। इस पंजाब दियां सरहदां तों पार भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानूं रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राहीं तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो उत्ते। सुनदे रहो अते सांझ।

अख बारे डेनमार्क की कहावत है कि बुरी अख कोई चंगियाई नजर नहीं आ सकती। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

रब बारे कन्नड़ दी कहावत है कि नशे च डुबे रहन वाले रब लई पुजारी भी शराबी चाहिदा है। सुने विचारां दे अंग।

मेहमान बारे सियाने कहंदे हन कि हर मेहमान दूजे मेहमान नूं नफरत करदा है अते मेजबान सारयां नूं। सुने विचारां लई सुनदे रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

बार धोखा दिता है थानू शर्म आनी चाहती है तुसी मैनू दूजी बार धोखा दिता है ता मैनू शर्म आनी चाहती है अगर तुसी तीजी बारी किसी नू धोखा दिता है ता साडे प्रशासन नू शर्म आनी चाहती है जेकर चौथी बारी धोखा दिता है ता साडे समाज नू शर्म आनी चाहती है चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

काम विच निपुण होना अपने बोलां ते पहरा देना अपने वादे नूं मुश्किलां दे बावजूद पूरा करना अते सरबत दा भला सोचना ए सब कुछ दृढ़ता तो बिना संभव नहीं हुंदा। विचार नरेंद्र सिंह कपूर किताब डूंगियां सिखरां विचारां लई जुड़े रहो हर मन।

कचली जी बोली छड चले गए बलैत गोर चढ़ी भी जहर तैनू अंग्रेजी सांप दी। ओ बाबू जी पंजाब फिर सिख दा जबाना होर वीर जी पंजाबी बोली।

ओही टोटा नहीं जिथे पांच दरिया वेंदे सन। इस पंजाब दिया सरहदा तो बार भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानू रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राही तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो उत्ते। सुनदे रहो अते सांझ।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा हुज्जा बांदरा टुक्कर कलंदरा।
1: जदों कोई बंदा किसे दूजे बंदे दी कमाई ते गुजारा करदा होवे उदों एह अखाण बोलदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com।

0: आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटो, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे।

0: जसविंदर भला भगवंत मान
1: साडी रैली च पहली बड़े नंग ते मलंग कठे होए
0: भजना अमली
2: बड़े बड़े शिकारी रहे हैं संतिए
0: गुरप्रीत घुगी
3: मैं ते ओनू करदा सौरी दियो
0: माई मोनो
4: ए पोस्तियां
0: पोस्ती
5: भाई अपनी मारी जाने हो मेरी भी सुनो
0: पोटू
3: शाह यार जेल जाके बुल्ले शाह तो नहीं बन गया
0: और खास खास कलाकारा दी कॉमेडी
6: बहुत ना बोल मैं पता नहीं केड़ी गल्लां चुप
0: हर रोज शाम नू 7 to 8 बजे तक सिडनी समय मुताबिक
7: यार पोटू शाह ओए कल तेरे मैं विआह दी मूवी देखी
8: ओ यार तेनू मैं दसदा ते काला नू जदों डोली तुरन लगी मेरियां सालियां मैनू घेर के खड़ गईयां ते कहंदियां
9: छंद पर अग्गे आइए जाइए छंद पर अग्गे तम पैर मेरी ए सोने वर्गी लाई न जीजा कम तू लाई न जीजा कम
7: ना फिर ते तो कुछ ना सरिया
8: ले मैं खड़े ने अपने दिमाग दे विच छंद कढ़िया मैं कह सुनो भी छंद पर अग्गे आइए जाइए छंद पर अग्गे रुपया भैन थवाड़ी नो काम नहीं लाउंदे दाच दे दे भैया
0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन

0: पता शांति जो बंदा नवा नवा सोरी जानता भी सालियां नू चा हुंदा
1: मैं सारिया नू चा हुंदा
0: जो मैं पहली बारी गया सारा टब्बर मेरे जाले हो गया।
1: अच्छा
0: सालियां भज भज पैन मैनू मेनू प्यार ना पुछदिया कहने जीजा जी तुसी शाकाहारी हो जा मांसाहारी
1: ना फिर तैं की कहा
0: मैं क्या बीबे आ गल एदा भी जेदा दाल सब्जी मिल जे ओदे भी रगड़े बन दई दे आ जे कदे सुख ना मीट वगैरा मिल जे ओदे हुंजे ला दई दे आ इस करके ना मैं शाकाहारी ना मैं मांसाहारी मैं ता बीबे मौकाहारी हां कहती है तेनो पता जो बंदा नवा नवा सोरी जांदा
1: हां
0: बंदा टोर टूर कट के जांदा भी कोई कसर ना रह जी
1: आहो भाई सालियां भी ता हुंदियां आ उना च भी ता टोर बनानी हुंदी आ
0: तेनो पता भी सालियां च जाके ता बंदा उही चांबल जांदा वा
1: आहो
0: एक दिन कहते शांति मैं सालियां नू लेके मैं कहा भी शाम जेदा टाइम सी मैं कहा चलो भी खेत गेड़ा मार के।
1: अच्छा
0: मैं चोरियों पर्दे जेदे नाल लंडू जा पिग भी मोटा ला लिया सी
1: हां
0: वाह मैं रन्ना च तन्ना मूहरे मैं तुरिया जावा साइड ते सालियां
1: सालियां भी कलोल कर दिया होनी जीजे नाल
0: पक्की गल है संति मैं गाहां जाके तुरे जांदे जांदे ना मिट्टी चक्की।
1: अच्छा
0: पहला मथे नु लाई
1: हां
0: फिर मैं नक नु ला के संग के क्या मैं क्या सालियो भाई सोहरिया दे पिंड दी मिट्टी दा मैं क्या खुशबू ही लैदा हुंदी।
1: अच्छा
0: ओ खड़खड़ हसन लग गई
1: ओ कास तो हसन लग गई
0: कहंदी जीजा जी जेड़ी मिट्टी सुंगी आ मिट्टी कानू आए ता घोड़े दी लद्दा।
2: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
3: इस गीत विच हिंसक अते मार ताड़ वाला विषय है जे एतराज़ है ता सरोते थोड़े समय लिए आवाज़ धीमी कर सकते हैं।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए
0: फटा।
2: होर ते होर अजकल एक पोस्टर लोगों के हाथ आ गया, एक फोटो जी जिदे च एक कुड़ी केकर थले गोडिया च मुंह लको के बैठी है।
3: ये ते गल ठीक है, पंजाब दा केड़ा ट्रक रिक्शा बस टेंपू ट्राली रेहड़ी स्कूटर ऐसा होएगा जिदे पिछे पोस्टर नहीं लगा होएगा।
2: ओ सुंडी पलवान, होर ते की, पिछे जे मैं वेखिया साडे लागे एक रोड़ी कुटन आला रुलदू रहिंदा ई।
3: हां
2: ओनू होर कुछ नहीं लभा, उहने अपने खोते दी पूछ मगरे पोस्टर बने होए ऐ। ए ते शुकर है कुड़ी दा मुंह गोडिया च लुकिया, नहीं तो बेचारी वैसे नहीं सी किसे नूं मुंह विखाउण जोगी रहणी।
3: महाराज ओ पोस्टर है ही बहुत कमाल दा, ते लोकां ने कदर तां करनी चाहिए ना। ओ यही तां पंजाबियां दी खासियत आ, बई पंजाबी हर चंगी चीज दी हर चंगे कलाकार दी कदर करदे आ।
4: कॉमेडी आवर हरमन रेडियो।
5: साडे नाते पाके बोलियां नचदी रही, टल्ली टल्ली वांग टुट

0: जवान हो गया आज जो बूटा जो जसो आड़दा लाया
1: पले बाले नीलू ने नू राजमा पानी पाया
2: बलकार हरदेव सुखी छिंदा जी ने रल सरदूल सिकंदर नाल गाया तिन्ना दी फिर तिकड़ी ने सब नानू केक खुआया
0: क्योंकि 24 छनकाटे हो गए पूरे ऐतकी सिल्वर जुबली आया
3: सिल्वर जुबली आया।
0: भाई छोड़ रहा की हो गया टाइम
4: उस्ताद जी खासा ही हो गया टाइम
0: फिर वेखदा की है घर दे पहली सुई माही नंगल डैम।

0: भाई छोटे हैप्पी जी एंड भाई।
1: हंसते रहो बसते रहो हरमन रेडियो।
2: वेख लैनी जट छाए होए रीला ते।

0: जनिया मैं सुनिया तेरा बापू तेरे नाल लड़के किधर चला गया, कितने रिश्तेदारी च गया?
1: ओ रिश्तेदारी के कहने हो गया शांति, ओ ता तेनो पता भी सितारे होटल आले कुरुक्षेत्र आले बेअंत होनी।
0: आहो
1: उन्ना कोले चला गया सी क्योंकि उन्ना दे बापू दे नाल साडा बापू किसे फौज कठे रहे।
0: अच्छा
1: ओ ता जान लग्या बस च बड़ा पंगा पा लिया ने बुढ़े ने।
0: ना की गल होगी?
1: उसे पास च किते अपना अतरो बैठी सी।
0: ला हाय हाय ओ ता लड़ाकी बड़ी है भाई।
1: मैं क्या लड़ाकी, दूजा उतो काम खराब है, बस दे विच किते कॉलेज दे मुंडे आमने होने बापले आले ओ बैठे सी। उन्हना ने शरारती मुंडे जानती उन्होंने की किया कि अतरो छेड़ता अतरो चूंडी चांडी बढ़ती। एक बारी तो हूं अतरो चुप रही, दोबारा फिर ना अड्डे कि दो तीन चूंडिया मुंडिया ने फिर बढ़ती। हूं ओ शांति कि दुखी हुई साडे बुढ़े दे गल पे कहंदी चौरिया तौली तेरे दाड़ी आ लत्ता तेरिया सिबिया चा तेन शर्म नहीं आंदी, मेनू मिस कला मारी जाना। हुण तेन पता शांति टिचरी साडा बुढ़ा भी है।
0: ना ओ की कहंदा?
1: ओ कहंदा बीबिया मिस कला की मैं तेन मारनी आ, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं काम करदा।
2: Harman Radio 24/7
3: Warning. इस गीत विच असभ्यक विषय वस्तु की वरतों की गई है, जे एतराज है तो श्रोते थोड़े समय लिए आवाज कट कर सकते हैं।

0: अपने देश का लीडर अपनी महबूबा नू की लिखूगा?
1: ऐ मेरी कुर्सी जिन्नी प्यारी महबूबा, तेरा ते मेरा प्यार इस तरह टूट गया जिमे घट गिनती दी सरकार टूटदी है। मेरिया ता मंगा भी कोई खास नहीं सी, मैं ता तेथो चंडीगढ़ वर्गा दिल मंगया सी, जा तेरे भाइया हथो मेरी मार कटाई दी अदालती जांच दी मांग कीती सी। मैं ता तेनू बड़ा नवे बने मंत्री वांगू खुशी खुशी मिलन दी कोशिश कीती, पर तई अगो हारे हुए एमएलए वर्गा मुंह बनाई रखे। पहला ता तू मेनू बड़ी नम्रता नाल मिलती सी, पर मगरों किसे जिते हुए एमएलए वांगू मुड़के दर्शने नहीं दते। भावे के तेरे मेरे प्यार दी सरकार टूट चुकी है, पर मैं लगातार तेरे डैडी नाल गलबात जारी रखी हुई है ताकि किसी भी समय अपने प्यार दी सरकार बहाल हो सके। भगवान ने तू अजकल अपने देश दी महंगाई वांगू बाधी तुरी जानी है, एवं छोटिया कचहरिया की गल नू वड्डी पार्लीमेंट च नहीं पचाईदा, हेठ ही लै दे के नबेड़ा कर लिया ठीक रहिंदा। नाले हुण तू खतां दे विच सच लिखण दी आदत पाला, एवं साडे वाली आदतां ठीक नहीं रहिंदियां। ए राजनीति है राजनीति, ए राजनीति है राजनीति।
2: इस घंटे विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत अते पंजाबी कॉमेडी।

0: हरमन रेडियो कमाल बा कमाल।
1: जिथे कोई चीके अपनी गल कह रहा होवे उथे सच्चे ज्ञान दी आस नहीं करनी चाहिदी। विचार लियोनार्डो दा विंसी। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया तुहाडे अंग संग
1: मेरा अखा मन लै सचना हर गल पल्ले बन लै सचना मोड़ा वाली राह नी चंगी ओए नित बगानी चाह नी चंगी असलों होला दिल नी चंगा बहुता वड्डा तिल नी चंगा बहुती खिलरी वल नी चंगी पिठ दे ओले गल नी चंगी तिड़के मारी शाल नी चंगी ओ बहुत लंबी काल नी चंगी रुखां थल्ले मच नी चंगा ओ ढेर फसादी सच नी चंगा कखां नेड़े अग नी चंगी ओ सिर तो पारी पग नी चंगी बेकदरे दी खो नी चंगी बदो बदी दी मोह नी चंगी करनी अंत अखीर नी चंगी ओए कुत्तियां अग्गे खीर नी चंगी लड़के कीती वंड नी चंगी लून दे नेड़े खंड नी चंगी मंगवी सोच ते चुक नी चंगी सुट के चटनी थुक नी चंगी कच्ची पीली रुत नी चंगी ओ सबनू दिसदी गुत नी चंगी अखां दे विच कहर नी चंगा ओ जीभ च भरिया जहर नी चंगा तू तू ते तकरार नी चंगी ओ हट ते बैठी नार नी चंगी जेठ हाड़ दी धुप नी चंगी मौतां वर्गी चुप नी चंगी रस्ते दे विच बेर नी चंगी ओ सुला च करनी देर नी चंगी ए गल्लां च भुल जावेंगा ओ सजना जगते रुल जावेंगा जगते रुल जावेंगा।

0: Armin Radio 24/7.
1: मैं कहा ए कोई गल ते नहीं ना, मैं कहा ए कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना। सजना ए कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना, मेरे दिल चो निकल भी सकना है, मेरे दिल चो निकल भी सकना है, दिल है कोई दल दल ते नहीं ना। इश्क तो मैं अनजान ही सही, इश्क तो मैं अनजान ही सही, पर तैनू भी ते कोई वल ते नहीं ना। मन्या बंदे इको जे नहीं, मन्या बंदे इको जे नहीं, पर तेरे गल टल दे नहीं ना। मैं कहना लहू इको जे ने, मैं कहना लहू इको जे ने, ओ कहिंदा ए खल ते नहीं ना। ते दुनिया मैथों बागी साबर, ते दुनिया मैथों बागी साबर, तू दुनिया दे वल ते नहीं ना। मैं क्या ए कोई गल ते नहीं ना, चुप मसले दा हल ते नहीं ना, चुप मसले दा।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: इस मामले विच जे असी डॉक्टर जगतार दी शायरी नू याद करदे आ कि टाटा नू तरसे जद कबीला मेरा, टाटा नू तरसे जद कबीला मेरा, की करांगा सन्मान च दुशाला लैके।

मुहावरे बारे अफ्रीका दी कहावत है कि मुहावरे जानन वाला आदमी साडियां औकड़ा नू सौखा कर दिंदा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी

0: ब्लॉक दे इना 60 मिंटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: उम्मीद निक्की जही जिवे एक निक्की जी किरण सूरज दी गिल्ली पौंच अवेसले पे बीज नू पुंगार दी। उम्मीद तुर गए माही दे मुड़ आउण दी वाट निहार दी। उम्मीद परदेसी बैठे पुत्रां दियां मावां दे दिलां नूं ठार दी। उम्मीद बुढ़े हुंदे मापियां दियां उदास चुरड़ियां नूं संवार दी। उम्मीद निक्की जही कई जिंदगियां दे वेड़े च आसां दे बीज खिलार दी। ए तोमतां शिकायतां तानियां ते मेणियां नूं पैरां हेठ दब धर देना किसे दे मोढ़ियां ते तरास दिंदा हथ कि हर औखे वेले मन अंदर बलदी रहे आस दी अग ते बस एक उम्मीद।
1: Harmon Radio 24/7।
3: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटामस के साथ?
3: ये हिप्पोपोटामस नहीं, मेरा कुत्ता है।
2: अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटामस के साथ?
4: हाय, जैसे परेश रावल और रेडियो हार्मन सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: किन्ना चिर हुन वक्ते रहना सहन ते बेड़ी पुठी तोर ले मलाहन ते याद उना दी चप्पी पाके कुट ले हिम्मत कीती छत चेते दिया वाहन ते कौतक है जा मेल तेरे दा एचा तू हासे ते कर कुली पाई आहन ते तेरे वसलां दी हांडी विच रचन तेरे वसलां दी हांडी विच रचन नू के नहीं किता आस मेरी दे महान ते फुल्लां ते हासे नू फल्लां पाया ने तितली काबू करके पिंड दे साहन कीते मुखड़े नाल मिलावा नजरां नू सब सजना दे चेहरे हेठ उतान तेरी चो कुछ दिन ठहरो बूहा मल्लांगे अजकल सोचा याद दिया कुछ ताहान ते याद दिया गलियां विच लैके घूमनगे होर किथे लै जाना सुनिया राहां ने ते वक वक समसां तरसौंदे ने चाले नूर एवें रल के तुरन दियां अफवाहां ने।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो
3: लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत
4: Harmon Radio 24/7
5: Sad ya romantic geetan de shaukeen ho

0: सलाह वाले डेनिश वाले कहंदे हन कि सट लगन तो बाद दित्ती नसीहत मरन तो बाद दित्ती दवाई वांग हुंदी है। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।
1: ना मेनू फोन आई हो ना मेरी होन आई हो, टुटा दिल लेके मेरे को बस रोन आई हो, बस रोन आई हो।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन
2: हवा ते पानी दोवें जहरी हो गए, पंजा दरियावां वाले शहरी हो गए। हवा ते पानी दोवें जहरी हो गए, पंजा दरियावां वाले शहरी हो गए। रंगा वाला कैसा ही हो गया बटाला, नशा होया चिट्टा ते पानी होया काला। आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला। तेरे गुरु घरां दे सिद्धांत मरी जांदे आ, कुर्सी पिछे इत्थे जथेदार लड़ी जांदे आ। ओ तेरे गुरु घरां दे सिद्धांत मरी जांदे आ, कुर्सी पिछे इत्थे जथेदार लड़ी जांदे आ। कढ दित्ता इन्हां तेरी कौम दा दिवाला, आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला। लीडर ते बाबे इत्थे लुट खाई जांदे आ, भोली भली जनता नू पिछे लाई जांदे आ। ओए लीडर ते बाबे इत्थे लुट खाई जांदे आ, भोली भाली जनता नू पिछे लाई जांदे आ। दोहे रल मिल करी जांदे काला माला, आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला। ओए नशा होया चिट्टा ते पानी होया काला, आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला। राजियां दी जननी कुखां च मारी जांदे आ, लुट के ते इज्जतां पा तजाब साड़ी जांदे आ। ओ राजियां दी जननी कुखां च मारी जांदे आ, लुट के ते इज्जतां पा तजाब साड़ी जांदे आ। कल्ला पुत जम धी तो मारदे ने टाला, आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला। सेवा विखे ढिलों तेरे अर्जी है लिखदा, झूठ इत्थे सच नालों महंगा हुण विकदा। ओ सेवा विखे सुख कीरत अर्जी है लिखदा, झूठ इत्थे सच नालों महंगा हुण विकदा। तेरे बिना सच दा कौन रखवाला, आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला। ओए नशा होया चिट्टा ते पानी होया काला, आके बाबा नानका पंजाब नू बचाला।

0: जर्मन रेडियो तमाल बा कमाल।
1: मेरी डिग्री भी ले लो ते मेरी नौकरी भी ले लो, चाहे ले लो मेरा कनेडा दा वीजा, पर मेनू वापिस कर दो कॉलेज दी कंटीन, ओ चाह दा कप ते समोसा, ओ तिक्की धुप विच घर तो निकलना, प्रोजेक्ट्स दे चक्करां च शहर विच भटकना, क्लासरूम च टेबलां ते चढ़ भंगड़ा पाउणा, ओ क्यूट जिही मैडम नूं सताउणा, एरोप्लेन बना बना के उड़ाउणा, ओ प्रोजेक्ट सबमिशन दीआं रातां नूं जागणा ते जगाउणा, बीमार बहुत होए पए आं कह के टाइम बधाउणा, ओ दूजियां दीआं असाइनमेंट्स नूं अपना बनाउणा, ओ सेमीनार वाले दिन बॉडी दा वाइब्रेशन ते लग जाणा, वर्कशॉप विच दिन रात पसीना बहाना, और एग्जाम दे दिन बेचैन जिहा माहौल, पर वो मां दा यकीन ते टीचर दा भरोसा, वो गर्मियां च रुखां थले बैठ गप्पां लड़ाउणा, वो रातां नूं जाग जाग ड्राइंग शीट्स बनाउणा।

0: इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: उच्चे मकाना दियां रंगलियां बादियां ने रात दे शिकारियां ने जुल्फां सवारियां ने रहिंदा है जमीन उत्ते ते चन नल यारियां ने ते दिल बेईमान दियां लंबियां उडारियां ने दिल बेईमान दियां लंबियां उडारियां ने एक अजब सौदा जुदाई है इस गलती समझ ना आई एक अजब सौदा जुदाई है इस गलती समझ ना आई है जा पुछ के वेख पर देसियां नू जिन्ना हिजरत कीती कमाई है ते तियां संभालन इज्जतां नू पुत्तर वारस खजानिया दे तियां संभालन इज्जतां नू ते पुत्तर वारस खजानिया दे दौलत रखी घर दे विच ते इज्जतां दित्तियां हथ बगानिया दे वक्त दी तकड़ी उत्ते असां तोले हिजर जुदाइयां ने ते जदों कीता हिसाब असां सजना नाल बस निकलियां बेपरवाइयां ने रखे वरके कोरे हयाती दे उत्ते गमां फेरियां सियाइयां ने ते लंगी उमर ते जानिया ऐ सुखी हथाइयां बस रुसवाइयां ने हथाइयां बस रुसवाइयां ने दिल दे गुंजल खोल वे माही तू ही ते कुछ बोल वे माही दिल दे गुंजल खोल वे माही तू ही ते कुछ बोल वे माही ओए गलियां दे विच रुलदे पया हुंदे सा अनमोल वे माही डुब गए प्यार प्रीतां पिछे सदरां मोईयां रीतां पिछे मेहंदी दे नाल हथ जखमाए नैन लगे ने जिस्मां पिछे नाल नमाजां बख्शिश नहीं जे ओए गल मुकदी है नीतां पिछे गल मुकदी है नीतां पिछे
1: Harmon Radio 24/7।
3: Sad या romantic गीतां दे शौकीन हो।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे सत्ते दे।
2: सतिकाल दोस्तो, मैं तुहाडा अपना गीतकार मनजीत कोटड़ा, ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, दिल पंजाबी जज्बात पंजाबी।

सुनो भी दोस्तों, सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो जा फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो जा फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो जा फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तो चाहे पिंडा विच बसदे हो जां फिर बसदे हो पिछे शहरां, हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

0: सुनो ते सुनाओ हरमन रेडियो।
1: बस हुण सब इत्थे कुछ ना कुछ इकट्ठा करन विच जुट चुके हन। भीड़ है इत्थे बहुत जिस विच मैं भी हाँ। किते काल मच चुकी है, दौड़ है, तेजी है, पर अंत नहीं इस दौड़ दा कोई। राता है पर मंजिल नहीं, शुरुआत ता है पर अंत नहीं। इस तरह असी बिना मंजिलों दिया राहां ते किते दूर बहुत दूर निकल चुके हाँ। हुण ता असी ए भी भुल गए हाँ कि कित्थों को तुरे सी, ते ए भी याद नहीं शायद कि जाना कित्थे सी। बस सफर

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो
3: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत
4: Harman Radio 24/7
5: Sad ya romantic geetan de shaukeen ho

0: 24/7.
1: थोड़े कोल अपना बुरश है, अपने रंग ने, अपने स्वर्ग का चित्र तुसी आप बनाते हो अते फिर इस दे अंदर समा जाते हो। विचार कजान जाकिस, चंगे विचारां ले जुड़े रहो हरन रेडियो दे नाल।

कुछ भी ना खादा किन्ने दिन भी ना सोए सी हुण सोच हासा आउंदा कदे तेरे पिछे रोए सी खत्म कर लिया जिंदगी नूं मैनू हुण नहीं पाउंदी बाकी तां सब कुछ ठीक ही है एक नींद नहीं आउंदी।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: पीड़ तेरे जान दी कितना चरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नो की करांगा मैं की करांगा प्यार दी लुट्टी बहार नर सजियां सजाइयां महफिलां हुंदे शिंगार नर हत्थी मरी मुस्कान दा मातम करांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नो की करांगा मैं जे रो पिया ते कहनगे दीवाना हो गया ना बोलिया ते कहनगे बेगाना हो गया लोकां दी इस जुबान नूं कितां फड़ांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नूं की करांगा मैं साहां दी डुबदी नाव नूं चौंका मिले जना इस जहान मिलन दा मौका मिले जना अगले जहान मिलन दी कोशिश करांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नूं की करांगा मैं सजना जरा को ठहर जा सजदा ते कर लवा अथरू ना कोई वेख लवे परदा ते कर लवा माना दिला दी सीच ते पत्थर तरांगा मैं ओ जान वाले अलविदा इन्नी कहांगा मैं पीड़ तेरे जान दी कितना चरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नूं की करांगा मैं पीड़ तेरे जान दी कितना चरांगा मैं तेरे बगैर जिंदगी नूं की करांगा मैं की करांगा।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: अपने इन्हां ख्यालां दे विच अमरजीत नाज दे इस ख्याल नूं याद रखना, सिर कर्जा लै के मरना हुंदा नहीं है चंगा, लफ्ज़ां च मोड़ देवी इस जग तों जो लवेगा

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
1: लकड़ी टुट्या किड़ किड़ होवे, शीशा टुट्या तड़ तड़, लोहा टुट्या कड़कड़ होवे, पत्थर टुट्या खड़खड़, लख शाला आशिक दे दिल नू शाला रहे सलामत, जिदे टुट्या आवाज ना निकले ना किड़ किड़ ना कड़कड़।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: सतरीकाल जी, मैं तुहाडा अपना जोगी सिंह, तुसी सुन रहे हो हार्मन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी।

0: हरमन रेडियो तमाल बाकमाल
1: वक्त औखे सौखे लंघ जांदे गल्लां याद सजन दियां रहिंदियां ने जदों मौत ने आ पाया फेरा मेंदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां ने ते वार शामियां मापे उदों याद आवन जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने।

0: ओ आजो आजो ताया जी वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तो चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर कर दी। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीयां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
3: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।
4: ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
5: मेरी पसंद के गीतां दा आनंद माणन दे लई तुसी हो हरमन रेडियो ते अपनी दोस्त सीमा देना।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradio australia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: हाँ 010 ते जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, तुहाडी गल, तुहाडे अंदाज च। आओ बनाइए समाज नू बेहतर। आले दुआले किन्ना कुछ वापरदा है जो खबरां दा हिस्सा नहीं बनदा। खबर ओ जो बेहतर समाज दा निर्माण करे। तां फिर आओ भेजो अपने आले दुआले दीआं खबरां। तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, क्योंकि गल इंज बनदी है।
1: ओल्ड इज गोल्ड समय दे गीतां नू सुनन दे लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। आया सियाल ते मोए कंगाल, आया हुनाल ते मोए कंगाल।
1: भाव स्पष्ट है कि गरीबां लई तां सियाल अते गर्मी दोनों मौसम सुखदाई नहीं हुंदे, क्योंकि उना कोल दोहां मौसमां नूं माणन दे साधन नहीं हुंदे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया।

0: पंजाबी वस्त नहीं तहजीब नहीं पढ़ के वेखन वारस बुल्ला बाहू लाल पंजाबी दा। सत श्री अकाल, मैं आ तुहाडे सारयां दी अपनी सतिंदर सत्ती। पंजाबी जुबान पंजाबी मां बोली दी सेवा करदा होया तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो।
1: चन नालो सोना चना पामे तेरा मूवे

0: मिट्टी बनाया ता ए असीस भी दे, तू मेनू मिट्टी बनाया ता ए असीस भी दे, मैं उगदे बीज नू खिड़दे गुलाब तक देखा।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो।

0: जूनियर
1: तुसी मनो जाना मनो पैसा बोलदा वीरे जदों जेब विच होवे खून खोलदा वीरे एह नच्चे ना बसा।

अपने विचार आपां नूं काम वल लै जांदे हन ते अपने काम आदतां वल, आदतां चरित्र वल। चरित्र ही अपना भविख जां किस्मत बनाउंदा है। सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमा रेडियो दे नाल।

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तेरी तरह मुझे कौन चाहेगा। तुझे जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा जट दा हासा भन गुआए पासा।
1: हासा ठट्ठा कर दिया जे किसे दी हरकत नाल किसे नू सट फट लग जाए उदो ए अखाण कहंदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: कोशिशा सदा रही ने कि कुछ अजिहा करिये कि साडे अपणियां नूं सदा माण रहे। तुहाडे संग तुहाडे तों तुहाडे लई ही सदाए आवाज है। बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करना अजे बाकी है। आओ इस काफले संग दिओ सानू सहयोग। तुहाडी हाजरी साडे लई मायने रखदी है। तन मन धन नाल इस प्रवास दे सारथी बनो दोस्तो। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नूं हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहाणी आवाज पंजाबी नूं स्पोंसर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वैबसाइट harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

मेहमान बारे पछमी अफरीका दी कहावत है कि जेड़ा प्राहुणे पहाड़ तोड़ के जावे वो छेती कीते नहीं पुलदा। सुने विचारां लई सुनदे रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: मुसीबत बारे सोलोमन टापू दी कावत है कि मी विच हनेरी दा वादा। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।
1: Yeah, huh? Yeah. Yeah, but some of this side. Red, red, time is motherfucker.

0: मुहावरे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। मझ वेच के कोड़ी लई दुध पीणो गए लिद सुटनी पई।
1: जद कोई अपने वलों ता चंगा सौदा करे पर ओह निकले काटे वाला सौदा ता ए अखाण कहंदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझाव देण लई यूट्यूब पर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।
2: टाइम लगू मिटने नू सानू।

0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: चार जी वैगनानी उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू।

0: बराबरी दे संबंध विच जर्मनी दी कहावत है, स्वर्ग तक पहुंचण लई किसान नूं भी उन्ना ही वक्त लगदा है जिन्ना किसी अमीर नूं। लेखक परमिंदर सोढी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: मैं क्या कट दू चढ़ तेरा लखनऊ वाला गिल।

0: मैं उन्हां विच नहीं शामिल घरों जो तुर तां पैंदे ने घरों पर कुछ कदम चल के ही राह विच रात दे हनेरे तों डर जांदे ने। मैं उन्हां विच शामिल हां जिन्हां ने होणियां दे अर्थ बदले ने ते बुझ रही जिंदगी विच फेर तों चंगियाड़ियां धरियां ने।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।

0: तो आ केड़ा वो पंड थले पिया बापू फिर सड़िया बड़िया पंड थले बोलिया
1: की
0: कहिंदा पांड चाखे वेख तेरी बेबे दा खत्म पे आई मौजी ठाकर मौजा लैन लिया के
2: हरमन रेडियो
3: 24 घंटे 7 दिन
4: जे तुसी खुद अमल करन वाले बन जाओ ता दूजे आप ही तुहाडे नक्शे कदम ते चलणगे विचार महात्मा गांधी अजाहे खूबसूरत विचारां लई सुनदे रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दिल पंजाबी जज्बात पंजाबी।

0: सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा नाले पुन नाले फलियां।
1: इस दा भाव है किसे एक कम नाल दूजा कोई होर कम मुफ्तो मुफ्ती हो जाना।
0: मुहावे अते अखान साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

आए दीवा पाल पंजाबी दा जो आखण कि विच पंजाबी वस्त नहीं तहजीब नहीं पढ़ के वेखन वारस बुल्ला बाहुलाल पंजाबी दा। सत श्री अकाल, मैं आ तुहाडे सारयां दी अपनी सतिंदर सत्ती। पंजाबी जुबान पंजाबी मां बोली दी सेवा करदा होया तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो।

0: नंबर लिया मैल हूँ जमा कार्ड कताली छब्बी चुरंजा बानवे सत ला भी ठीक है ये तो सीटो सानू सने जो दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़क के एदा सीटो सुने
1: अगले अद्धे घंटे सुनोगे तुसी आहा टॉप की।

रज वारे स्वीडन दी कहावत है कि नौकर नू रजवी रोटी देवोगे ता गां वध दुध देवेगी अते बिल्ली कट दुध पीवेगी। विद्या विचारी ता पर उपकारी।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कर आ मैं।
1: जो रेते च रच गए ने हड्डां दे टुकड़े, जो बन गए बरोले गुलाबी जे मुखड़े, ओ नमियां आकारां च ढलदे ही रहने, ए चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने, ए चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने। मैं गद्दियां ते बिस्तर पोशाकां तो पुछया, मैं हीरां तो पुछया, मैं चाकां तो पुछया, ओ कहंदे के बूटे तां फलदे ही रहने, ये चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने, चलदे ही रहने। ये गुंदियां जो गुत्तां ये लमकण परांदे, ये कित्थों सी आए ते किधर नू जांदे, ये मौसम ने मौसम तां टलदे ही रहने, ये चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने। सिलाई जवानी जिन्ना दे मैं लेखे, वो चादर दे तोते उड़ा के नहीं वेखे, संदूकां च पए एवें गलदे ही रहने, ये चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने। जिन्ना सिर ते छतनी ना पैरां च जोड़े, जो फिर भी भजाउंदे ने उमरां दे घोड़े, ओ भुखां ते तेहां च पलदे ही रहने, ये चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने, ये चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने। मैनू आके पुछदी सी मजहब दी टोली, तू लिखना क्यों चाहना है दरख्तां दी बोली, ए काशी बनारस तबलदे ही रहने, ए चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने, ए चक्कर अनोखे ने चलदे ही रहने, चलदे ही रहने, चलदे ही रहने, चल्दे ही रहने।

एक युगोस्लाविया दी कहावत अनुसार पुरानियां आदतां लोहे दियां कमीजां हुंदियां हन। चंगे अते सज्जे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

हनेरे बारे अफ्रीका दी कहावत है कि चोर अते हनेरे दी दोस्ती हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: तू कहा कुछ लिख मेरे लिए। मैं कोशिश कीती सी पर लिख ना पाई सा। कदे लिख लेंदी सा तेरे हासियां ते, तेरिया गल्लां ते, तेरिया अखां ते, पर हुण लिख ना पाई सा। कुछ याद नहीं आ रहा सी, कुछ लफ्ज अंदरों अंदरी खिलर गए सन, कविता नहीं बन सके सन, बस चुप कर गए सन। पतझड़ दे मौसम वर्गा मौन, चुप चाप डाणियों टुटदे पत्तियां दा दर्द मैं महसूस तो कर सकती सा, पर तेनू लिख ना सकती सा। बाहर ते लिख सकती सा, फुलां दे टहकदे सिरां ते खुशबुआं दा नचना लिख सकती सा, पर शायद मैं पतझड़ दी उदासी ते ना लिख पावा। मैं इंतजार करांगी नवियां करूंबलां फुटण दा, कड़ियां दा मुड़तों खिलण दा, तेरे मुड़तों उवें ही मेरे मन दियां पौड़ियां ते ठक ठक करके उतरण दा, ते मेरे नाल खिल खिला के हसण दा। चला असे मुड़तों बन जाइए अजनबी, मुड़तों मिलिए एक वक्रा जिहा रिश्ता बनाइए, जिस विच ना तेरे नाल कोई रोसा, ना होवे तेरे नाल कोई उलांबा, ना तेरे आउण दी उड़ीक, ना तेरे जाण दा पछतावा। चला चल मुड़तों बन जाइए अजनबी, चला।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

जे तुसी वक्त सिर नहीं पहुंच सकदे तां वक्त तो पहला जरूर पहुंचो। वक्त सिर पहुंचना मुश्किल हुंदा है पर वक्त तो पहला पहुंचना सौखा हुंदा है। चंगे विचारा लई जुड़े रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, गरीब रखे रोजे दिन वड्डे आए।
1: जदों कोई बंदा अजिहा कम आरंभ करे जेड़ा होर बथेरे करदे होण पर उसनू होरना नालों वधेरे औखियाई दा टाकरा करना पवे, उदों इह अखाण वरतदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149499। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: आवी
1: करे कुजी ने यमराज रखना आन मिलो फिर लखाई कारते
0: तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

उमर बारे यदीज दी कहावत है कि 7 साल दी उमर विच तुसी जिस तरह दे हुंदे हो उसे तरह दे 70 साल दी उमर विच हुंदे हो। विद्या विचारी।

0: ते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां।
1: खाद्यां खूह वी खाली हो जांदे ने। इस दा भाव है कि वहले बह के खाण नाल तां जोड़िया तन वी मुक जांदा है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले
2: हरमन रेडियो।

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की लाई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी एड दे लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

खुदाया तेनू तकिया ते साया तेरे नालों वद सुकून आहा मैं पीरां दे जाया हवा ने पुछया बदलां नूं ए मौसम कोई नवा आया मैं पहली वारी वेख्या।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा झूठ दे पैर नहीं हुंदे।
1: इस दा भाव है कि झूठा बंदा कदे कुछ कहंदा है ते कदे कुछ, ओ सदा थिड़कदा ही रहंदा है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

हाजी दोस्तों सत श्री अकाल, मैं हां म्यूजिक डायरेक्टर डीजे सिक्स फ्रॉम द यूके। इसे सुन रहे हो हजमान रेडियो।

यूनान दी कहावत है कि चंगे मलाह दी पछाण तूफान आए तो ही हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

पैसे बारे जापान की एक कहावत है, नरक अंदर भी लैन देन का जरिया पैसा ही हुंदा है। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।

0: मैं ईदू शरीफ, मेरे वालों रेडियो सुनने वाले लख लख मुबारक, लख लख बधाइया।
1: असी खुदा अगे अरदास करते हैं कि हरमन रेडियो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

पहले पाशाह ने एक फैसला करना है, रब्बी दात पुत्रा नू देनी है के सेवक नू। मेरे बाप ही हुंदे ता फैसला स्पष्ट सी, पर ओ गुरु भी सन। उन्हां कहा, घर तुसी सांभ लवो, गुरियाई गद्दी सेवक नू ही मिलेगी, टिकाणा तुसी सांभो, सेवा सेवक नू। ए हैरानी हुंदी है कि डेरा पुत्रा नू दे दिता, सेवक नू सिर्फ थापड़ा दे के तोड़ दिता, आशीर्वाद दित्ती कोई जमीन नहीं, डेरा नहीं, जायदाद नहीं, पोथी ते कमर कस्सा लै जाओ, सेवा करो। सारिया बरकतां आ गईयां। गुरु नानक देव जी दा जतन सी मनुख नाल मेहनत कीती जाए, एक बूटे दी तरह जिवें एक माली उस नाल करदा है ते जो उस विचों पैदा होना है हो जाए। गुरु नानक ने मेहनत कीती सिख नाल ते सिख विचों पैदा होए गुरु अंगद देव। विचार यानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग ऑन करो harmanradio.com ते।

सच्चा सौदा सदियां दा, जिओ नीर नैणा दियां नदियां दा। ए सच्चा सौदा सदियां दा, जिओ नीर नैणा दियां नदियां दा। दिल दियां जो तारां ने, जिओ हंसां दियां डारां ने। सरहदां मन विच रखदे नहीं, हराम दा कीमा चखदे नहीं। अंबरां दी असां करनी राखी, अंबरां दी असां करनी राखी। बनू किसे इतिहास दी साखी, जो सुपने असीं पिरोए ने, ओ रहने सदा निरोए ने। अखां दी जो लाली है, जानी कदे ना खाली है। तिलक जो मस्तक लाया है, सोहां चुक सजाया है। जो असां ने मंजिलां चुनिया ने, ओ समझ नहीं इस दुनिया दे। जो असां ने मंजिलां चुनिया ने, ओ समझ नहीं इस दुनिया दे। बस सच्चा

महाराज ने एक श्लोक लिखा दूजे पातशाह ने गुरु अंगद देव पातशाह ने आसा दी वार दे विच इसकी असी बहुत डूंगी व्याख्या कीती हुई है तुसी वो सारे एपीसोड सुन सकते हो। वो कहंदे ने कि चाकर लगे चाकरी नाले गारब बाद गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध। जदों कहंदे नौकर नौकरी लगदा है ते नाले तां वो हंकार करदा नाल बहसदा है मालक दे तो टोटली विरोधाभास यह सिद्धांत कायम कर लैंदा है कि नौकर ने फिर नौकरी क्यों करनी है जदों उन्हें हंकार करना है फिर मालक नाल बहस ही जाना उहदा कहना नहीं मनना गल्लां करे कनेरियां एवी इधर उधर दी गल्लां करी जांदा है कम करदा नहीं खसम ना पाए साध। अपने मालक दा ओहो उदी मेहर उदी खुशी प्राप्त नहीं करदा आप गवाए सेवा करे ताकि चपाए मान। उस तो बाद हल भी वैसे दस्या पर अज आप जिहड़ा मसला पहलियां दो पंक्तियां ते ही है कि जदों असीं धर्म नूं फॉलो करदे आं या कितें जॉब करदे आं ते जे जॉब सानूं पता है उहदी डिस्क्रिप्शन की है जे आपां मिलिट्री च जाना है आर्मी च जाना सानूं पता है सानूं गोली भी लग सकदी है असीं जाना भी है लड़ाई ते भी जाना बार्डर ते भी जाना ते उधर लड़ाई लग जावे ते उधर कई लोग छुट्टियां लैके भज जांदे ने जां जांदे नहीं गल्लां मार के इधर उधर पै जांदे ने उन्हां दा कोर्ट मार्शल हुंदा है क्योंकि वह खसम ना पाए साध। जिस काम लई उन्होंने तनखाह ली हुंदी है जां उन्हूं डिस्क्रिप्शन का पता हुंदा वी मर भी सकदे तां ही वह तनखाह लै रहे हुंदे आ वह खत्म हो जाता। इसे तरह किसी आपां दुकान ते लगदे आ किसी फार्म ते लगदे आ सानू पता हुंदा वी इह काम जिहड़े मिट्टी नाल लिबड़ना भी पैणा दुकान दे विच सानू समान लियाणा भी पैणा छड्डणा भी पैणा बेचना भी पैणा जे असीं कहीए नहीं असीं नहीं करना असीं बैंसी जाइए मालक दे नाल तां फिर उह सानू कढ देगा क्योंकि असीं जॉब डिस्क्रिप्शन दे विच फिट नहीं हुंदे। गल्लां करे कनेरियां गल्लां कर करके किन्नी क देर असीं इह काम सार सकदे आं। सो धर्म दे विच विश्वास हुंदा आ धर्म उदों फॉलो करदा बंदा। मैं थोड़ा इत्थे होर डीप जाना चाहना डूंघा जाना चाहना है कि की तुहानू लोड़ है धर्म नू फॉलो करन दी पहला तो यह सवाल होना चाहिदा क्यों कर रहे हो तुसी फॉलो क्यों असी फॉलो क्यों कर रहे हैं सारा कुछ की लोड़ है सानू असी अद कच्चे जहे फॉलो कर रहे हैं जा कह लो अद भुन्ने हुए फॉलो कर रहे हैं सानू पता हुंदा नहीं क्यों कर रहे हैं। असल दे विच अज अजमेर सिंह होना ने भी बहुत सुंदर विचार दिता अपना फेसबुक ते मैं उन्हूं फॉलो कर रहा कि जदों पता ही नहीं टारगेट ही नहीं पता फिर तुसी वो जॉब ज्वाइन क्यों कर रहे हो जद पता ही नहीं उत्ते की उहदी डिस्क्रिप्शन की है तुहानू लोड़ है। असल दे विच जिहड़ा प्योर अध्यात्म है प्योर खोज है वह अंदर ही हुंदी है। गुरु साहबाना ने भगता ने अज अजमेर सिंह होना ने बयान किया कि उन्होंने किसी धार्मिक एंगल तो कोई बाणी नहीं लिखी हुई वह फकीर सन वह मौजी सन इंडिपेंडेंट सन उस एंगल तो उन्होंने अपने तजर्बे लिखे हुए ने जिदा उन्होंने अनुभव किया जिदा उन्होंने परमात्मा नु पाया परमात्मा नु पाया। सो इस करके साडे अंदर भुख होनी चाहिए है तां असी वह जॉब ज्वाइन करिए जदों असी लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग जदों कहंदे ने कि आपां थानू पता ही नहीं असी धर्म वैसे ही फॉलो करी जा रहे हैं वैसे ही असी बादां दे विच पई जा रहे हैं। हुण गल आउंदी है बादां दी बहस दी जिथों आपां अज विचार शुरू किया सी ते तुहानू पता जिहड़ा नाम है बड़े उच्चा स्टेटस रखता है अध्यात्म दे विच एक नाम ते पहले पातशाह राग सारंग दे विच कहंदे ने कि तरिग तिना का जीविया जे लिख लिख वेचे नाम कहंदे ओ लोग जिहड़े लिख लिख के नाम वेचदे ने इहनू बिजनेस बनाउंदे ने उहनां दा जीना जिहड़ा आ ओ तरिग है खतम दुशवार है उहनां दा जीना। खेती जिना की उजड़े खल वाड़े क्या थाऊ कहंदे भी जिना दी खेती उजड़ गई है ओहो जिथे खलवाड़ा जिथे दाने रखने ने उन्हां दे तैयार कीते दा की फायदा होया दाने रखने वाली थां जिना दी खेती ही उजड़ी पई है। सच्चे सर मैं बाहरे अगे लहे नदाद कहंदे सच्ची मेहनत कीते तो बिना परमात्मा या अगे जिहड़े मालक है उहदी हजूरी दे विच उहदी दाद नहीं मिलदी। असीं आप देखदे हां जे असी मेहनत नहीं करते कम नहीं करते तो फिर उहदे रिजल्ट नहीं निकलते जिहड़े लोग ने जां मोरे मालक है वह तुहानूं शाबाश नहीं दिंदा गल्लां नाल नहीं हुंदा फिर वह अके महाराज कहंदे ने कि अकल ए ना आखी है अकल गवाईए बाद। हुण बहस की गल करनी है कि जिहड़े अकल वाले बंदे हुंदे ना वह बहस दे विच नहीं पैंदे क्योंकि उहनां कोल समां ही नहीं हुंदा बहस करन दा बहस दे कौन ने मूर्ख
ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਲਹੀਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਅਕਲ ਗਵਾਈਏ ਬਾਦ। ਇਹ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ। ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਬਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਕਲ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਵਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਬੁੱਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਤੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨੀ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਨੀ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੇਚਣਾ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾਮ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਚ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਇਹ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖਿਆਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

मन को कोई खोजो पाई। गुरबाणी की आत्मक खोज आत्मक लाहे की प्राप्ति लई गुरबाणी दुझिया कुंडिया खोलता प्रोग्राम गुरबाणी विचार सुनते रहो सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो ते जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

सतगुर अर्जन देव जी अते जहांगीर दो मलाहां दी टक्कर सी। दुनियावी मलाह किसे दी बेड़ी डोब सकता है, पर किसे दे जीवन दी बेड़ी, धर्म दी बेड़ी नहीं डोब सकता। उसका वाह सिर्फ उस बेड़ी नाल है जो पानी विच तरदी है। जेड़ी बेड़ी भवसागर विच तरदी है, उस शब्द दे बेड़े बारे जहांगीर नूं की पता हो सकता है। जहांगीर अपनी बेड़ी जरूर डोब गया। गुरु अर्जन देव जी नूं भवसागर तो तरना आउंदा है, उन्हां दा बेड़ा अज भी तर रहा है अते अनेकां नूं तार रहा है। उन्हां दी सच्ची प्रीति सी, ओह निभ गई। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना।

0: सरगुण दुनिया विच विचरदे होए असीं गुर शब्द दे अखरी स्वरूप गुरबाणी दे लड़ लगना है अते भाव भावनी नाल पाठ कीर्तन ते विचार करनी है जो कि आत्मक पंध लई अत जरूरी है। गुरबाणी पाठ कीर्तन ते विचारां लैके आप सरबत संगत दी सेवा विच हाजिर है तुहाडा अपना हरमन रेडियो प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे राही।
1: शिवा बरमो एह है शुभ कर मनते कब हूं

0: ए सच्चा सौदा सदियां दा, जिओ नीर नैणा दियां नदियां दा। ए सच्चा सौदा सदियां दा, जिओ नीर नैणा दियां नदियां दा। दिल दियां जो तारा ने, जिओ हंसां दियां डारा ने। सरहदां मन विच रखदे नहीं, हराम दा कीमा चखदे नहीं। अंबरां दी असा करनी राखी, अंबरां दी असा करनी राखी। बनो किसे इतिहास दी साखी, जो सुपने असी पिरोए ने, ओ रहने सदा निरोए ने। अखां दी जो लाली है, जानी कदे ना खाली है। तिलक जो मस्तक लाया है, सोहा चुक सजाया है। जो असां ने मंजिलां चुनियां ने, ओ समझ नहीं इस दुनिया दे। जो असां ने मंजिलां चुनियां ने, ओ समझ नहीं इस दुनिया दे। बस सच्चा सौदा बनना है, नानक दे नक्शे चलना है, नानक दे नक्शे।
1: खालसा जी कल की धर पातशाह दी बख्शी होई फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एमसी म्यूजिक दे निर्माता पेश करदे हन धार्मिक गीतां दी कैसट, करन एमसी दी आवाज दे विच साजिया है पंथ खालसा।
2: भाई लैणे दा शक मुक गया सी। भाई लैणे ने गुरु नानक देव नूं पूरा गुरु मन लिया सी, अते पूरे गुरु दा पूरा ही हुक्म मन्या सी। इसलिए पूरे गुरु दा पूरा हुक्म मनन वाला भाई लैणा आप भी पूरा हो गया। वो लैणे तो गुरु नानक देव दा रूप हो गया, अते गुरु अंगद देव बन गया। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सोने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

रोजाना श्रवण करते हो प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच नितनेम शब्द कीर्तन गुरबाणी विचारां अते सिख इतिहास पेश कीते।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: फेर के अगे रखिया जे दसा दरबार, मुहो के बोलन बोलिया जे सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। जप बाणी विचों बाबे नानक दे इन्ना अलाही बोलां दे नाल देश विदेश विच वसदे समूह गुरसिख स्रोतिया नूं दलजीत सिंह मेहता चौंक वालों प्यार ते सत्कार भरी गुरफते प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ता दुनिया दे कोने कोने तो जिथों भी तुसी हरमन रेडियो नाल जुड़ना करदे हो, प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी विच तुहाडा स्वागत है। सिडनी आस्ट्रेलिया अनुसार अमृत वेले दे पांच वज चुके ने ते अज दे प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी दी सब तो पहला आओ रूपरेखा जान लईए। सब तो पहला आपां सारे रल के गावांगे बाबे नानक दी बख्शिश नितनेम दी बाणी जपजी साहिब, ते इस तो उपरंत शब्द कीर्तन गुरमत विचारां दा निरंतर प्रवाह करीब ढाई घंटे चलदा रहेगा। ता आओ सरवण करिए जप बाणी दा पाठ।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाय रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न केहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै

आए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सपावा विन पाने के नाए करी जेती सृष्ट उफाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवाख नाम विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त रै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे।

सेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगाह, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिनसूत जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर।

जो तुझ पावे साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम।

जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तंदे पानी तोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए, परिये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ।

सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बानी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन,

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान थितवार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जां करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सबको आख है एक दू एक सियाणा।

पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जेत समनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाए ए अंत न जाने को बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए। ओ जाने।

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रमाण, अमूल बख्शीस।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक आवार, कर कर वेख है सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था परखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत नंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत बहारा तीरे सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पौ खल्ला अग्न तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ताल, कड़िए शब्द सची

राग जैसी विचों पंचम पातशाह जी दे ए पवित्र बोल कि जिन्हां गुरमुखां नूं दिन रात उस परमात्मा दे दर्शना दी लोचा रहिंदी है, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताए, बिलप करे चातरक की नाए। उन्हां दी चितवना, उन्हां दा चेता मालक दे नाल जुड़िया है, वह मालक नूं चेते रखदे ने, गुरु दे अगे अरदास करदे ने, सतगुरु खोल कपट गुर मेलिया, साडे मन तों भरमां दे पर्दे ला दियो, विकारां विचारां दे पर्दे ला दियो। एक कपट है ना, दरवाजा खुल गया ते सामने अकाल पुरख है, वह मालिक जिहड़ा सानू दर्शन देण लई अंदर बैठा है, पर गुरु दे नाल गुरु दे राही उसका मेल होना है। नानक हर संग मीत, फिर उस हरि दे मित्र बन जाना है। तू तू करता तू हुआ, तो आओ गुरबाणी दे इस पवित्र शब्द राही उस मालिक दे नाल अपना संजोग बनाइए, उदे नाल जुड़ना।

जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। लोकाई मौतों डरदी फिरदी है, पर भगत कबीर जी कहते मरण तो ते बाद परम आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। बड़ी हैरानी दी गल लगदी है ना, क्योंकि साडे वर्गे ते रोज बीमारियां दुश्वारियां एक्सीडेंटा नाल घुल घुल के मर रहे ने, पर भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां इउं कहिंदे दिसदे ने, कबीर मोहे मर नहीं खाचाओ है, मरो त हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे भार। क्या अंदाज है, मरना भी है ते वो भी हरि दे द्वारे ते। भाई मती दास जी दी शहीदी दी तैयारी हो रही सी, लकड़ा दे शिकंजे विच जकड़िया होया सी, दो जलाद बड़ा सरारा फड़ी मती दास दे शरीर नू दो फाड़ करन लई तैयार खड़े सन। काजी ने भाई मती दास नू आखरी इच्छा पूछी, तेरी कोई आखरी ख्वाहिश है? कहिंदे ने, मेरी आखरी इच्छा है कि मैनू शहीद करन तों पहला मेरा मुंह मेरे मुर्शद वल भाव धन गुरु तेग बहादुर जी वल कर दिता जावे। किस किस गुरसिख की गल करिए, कदे मौका मिलिया तां शहादतां दे टॉपिक ते खुल के सांझ पावांगे। राग वड़हंस विच धन गुरु नानक पातशाह इउं दर्ज करदे ने, जिसका सरलेख है अलाहिया, इस बाणी विच सूरमिया दे हक भाव कुरबान होने बारे एक शब्द पवित्र अंग 580 81 उपर दर्ज है। आओ ये शब्द सरवण करदे हां। मरन मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरन परवानो, सूरे सही आगे आखिया, दरगे पावे साची मानो। इस पवित्र शब्द का कीर्तन रूप विच गायन कर रहे ने हजूरी रागी भाई गुरिंदर सिंह जी बटाले वाले, ते उन्हां दा जथा। आओ सरवण करिए, मरन मुनसा सूर्या हक है, जे जो हुए मरण परवानो।

सुनत मल सगली खोवै, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपौं दयाला जियो। राग मास दी बाणी विच्चों पंचम पातशाह दी ए पवित्र बोल। जिस अकाल पुरख दे गुण गाया, मन विच खेड़ा आ जावे, हरियावल आ जावे। जिवें बसंत रुत आउंदी आ ना, ते सारे फुल बूटे हरियावल नाल भर जांदे ने। उस अकाल पुरख दी गल सुनिया, उहदी कथा सुनिया, साडी जन्मां जन्मां दी मैल लह जांदी है। उस अकाल पुरख दी बख्शी हुई संगत, साध संगत, उहदे विच रल मिल बैठिया, उस परमात्मा दा नाम जपिया, साडे जीवन दे विच जो तब्दीली आउंदी है, वह कथन तो बारी है। तो आओ गुरु प्यारियो, उस अकाल पुरख दे गुण गाइए, उस अकाल पुरख दी नाम बाणी दी विचार सुनिए, साध संगत करिए। आओ साध संगत रूप विच आपां सरवण करदे हां ये पवित्र शब्द।

किसी दुनियावी बंदे की वड्याई करनी हो ना तो आम ही अल्फाज वरते जाते हैं, क्या बात है, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत ही वधिया। मालक की कुदरत दे करिश्मे वेख के सतगुरु जी वसमादक होके उदी इउं वड्याई करदे ने, कुदरत कमन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। हे पारब्रह्म तू बेअंत है, तेरी कुदरत बारे वर्णन नहीं किया जा सकता। जिवें जिवें तू साडे मना विच अपनी वड्याई बख्शदा है, उवें ही असीं तेरे गुण गा लेंदे हां। तू पार ब्रह्म बेअंत स्वामी, तेरी कुदरत कहण न जाई, सच्ची तेरी वड्याई जाको तुद मन वसाई, सदा तेरे गुण गावे। एडी वड्डी तेरी कुदरत है, तू किन्ना समा इस कुदरत नूं साजन विच लाया होएगा। तां सतगुरु जी इउं फरमान करदे ने, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। उन्हें तां इको बचन दे नाल ही सारी सृष्टि साज दित्ती, ते असी सोचदे हां बड़ा समा लगा होएगा। भाई गुरदास जी सतगुरां दे बचन ते अपनी 78वीं वार विच इउं लिखते ने, एक कवाओ पसाओ कर ब्रह्मांड पसारे, कर ब्रह्मांड करोड़ लख रोम रोम संजारे। ओ गुरु प्यारिया, आपां एक घर बनाउंदे आ ना, ते उहदे विच किन्ने पिलर खड़े करदे आ, किन्ने बीम पाउंदे आ, पर अकाल पुरख ने बिना थम्मा तों, बिना किसी थम्मी तों, बिना किसी आसरे तों असमान रूपी छत पा दिती है। एहो जिहा नजारा वेख के तां वसमादक होना बनता है ना। बाज थूनिया छपरा थामिया, निधरिया कर का निकरिया कर पाया, बिन जड़िए जड़ियो जड़ावा थेवा अश्चर जलाया रे। भगत कबीर जी तां इन्ने वसमादक होके फरमान करदे ने, ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद के पोले बरोले नीर। आओ गुरु प्यारियो, राग भैरव विच पंचम पातशाह दा बख्शिश कीता होया एक शब्द सरवण करदे हां, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह। शब्द कीर्तन सरवण करा रहे ने भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। एक गल होर कि सतगुरां ने इस पवित्र शब्द दे रहाओ दे बंद विच इन्ना विस्माद दे दिता है, खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाओ, झूठ झूठ झूठ झूठ दुनी गमान। किन्नी अचरजता प्रगट कीती है अचरज तेरी कुदरत। आओ सरवण करिए इन शब्द।

0: जिन्हां नूं असीं रब दे भेजे कहिंदे हां, उन्हां विचों तां अनेकां अपने आप नूं भगवान खवाण लग पए। उन्हां इत्थों तक दावा कीता कि जिहड़ा काम रब भी नहीं कर सकदा वो असीं कर देंगे। जिहड़ा बंदा ये आखे सब कुछ परमात्मा ही करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके नेड़े कौन आवेगा। आम लोग यही समझणगे कि यह गरीब तो साडे वर्गा ही है, इस विच ते साडे विच की फर्क है। जिड्डा वड्डा कोई करता बने उन्ना वड्डा ही संसार विच उसका बोलबाला हो जाता है। सच यह है कि जिहड़े बंदे किसी पागलखाने या किसी जेल विच होने चाहिए हन, वो अनेकां पीर ते महापुरख बने बैठे हैं। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: गुरु प्यारियो, उस मालिक की अपार कृपा होवे तां इह मनुखा जन्म मिलदा है, पर किस मकसद लई मिली इह मनुखा देह। धन गुरु नानक देव पातशाह जी अपनी पंचम जोत विच इउं फरमान कर रहे ने, धन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो। धन सो कलयुग साध संग कीर्तन गाइए नानक नाम आधार हीओ। इस साध संगत लई ते साध संगत च मिल बैठ करके रब्बी कीर्त लई ये मनुखा देही मिली है। यह मनुखा देही मिली तां सी साध संगत लई रब्बी कीर्त गाउण लई, पर इस देही विच वसदे जिहड़े पंज चोर ने ना, काम क्रोध नगर भव परिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पंजे चोर जिहड़े सानू अंदरों ही अंदरों लुट रहे ने, साडा अमृत रस पी रहे ने। ते जे कोई चोर लटेरा बाहरों लुटे तां उस नूं तां पकड़ लिया जाएगा, उहदी पैड़ दब ली जाएगी, पर जदों कोई घर दा ही अंदरों अंदर लुटी जाए तां इस लुट दा पता किवें लगे। इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मन मुख ने बूझे कोई न सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा बाज गुरु गोबारा। भाई गुरदास जी ने अपनी रचना दी 15वीं वार दी 30वीं पौड़ी विच यह फरमाया है कि 84 लख जुना वारा, अमृत लूटे मन मुख ने बूझे कोई न सुने पुकारा, अंधा जगत अंध वरतारा बाज गुरु गोबारा। भाई गुरदास जी ने अपनी रचना दी 15वीं वार दी 30वीं पौड़ी विच यह फरमाया है कि 84 लख जुना विचों उत्तम जो

मारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। राग गुजरी दी बाणी विचों गुरु नानक पातशाह दी पंचम जोत यों बख्शिश करदे ने कि मालिक इस मनुख इस जीव दे वस कुछ नहीं है, डोरी सारी तेरे हाथ विच है प्रभ, डोरी हाथ तुम्हारे, जिवें तू बुलाउना है ना उवें जीव बोलदे ने, उवें तेरा जस गाउंदे ने। कुदरत दा इह अथाह खजाना मालिक ने बख्शिश कीता जरूर है, पर खेड अपने हाथ विच रखी हुई है। बस एक कृपा कर दियो साध संग नानक जस गायो, मैं साध संगत विच अकाल पुरख तेरा जस गाउंदा रवां, नानक नाम त्यौंदा रवां, जो प्रभ की अत प्यारी, जो प्रभु नू अति प्यारी लगन वाली वस्तु है। नाम ध्यान सुख फल पायन आठ पहर अरादे, ता आओ उस मालक दी बंदगी विच उसके नाम ध्यान विच इस पवित्र शब्द दे राही जुड़ना करी।

0: अमृत वेले दी तान मनुखता दे अर्थ कहंदी बाणी
1: तू प्रब दाता दान मत
0: हर शब्द देवे जदो जिंदगी नू आसरा फिर शुरुआत होवे सुहावनी रोजाना प्रोग्राम दलजीत सिंह होना दे नाल हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे संग

मन वड़ी आस आस निराशा हिक तू हों बल बल बल गई आस। रागमारू दीवार विच 18वीं पौड़ी नाल संबंधित दूसरे श्लोक विच सतगुरु उपदेश करदे ने कि आशिक कौन है। आशिक ओ हुंदा है जिन्हों सिर्फ अते सिर्फ मिलन दी तांग होवे, वो बाकी आसा नहीं लगा के बैठता अपने आशिक ते। ते सच्चे पातशाह आसा दी वार विच भी इहो फरमान करदे ने, आशिक ए ना आखिए जे लेखे वरते सोए। मालिक तू है जो सानू इना आसा दे चक्कर विचों कढ़ के सच्चे आशिक सच्चे भगत बना सकदा है। इस करके मैं तेरे तो बल बल बल बल गई आस। मैं बार बार बलहार जाना सदके जाना के तू मैनू अपने दर दा सच्चा कुकर सच्चा आशिक बना लेना है। ता उस मालिक दे दर दे आशिक बनने लई गुरबाणी दे ए शब्द दे नाल जुड़ना करिए।

0: बहुत सारे भगत भी कीर्ति सन। कबीर जी जुलाहे का काम करते सन, धन्ना जी किसानी करते सन, नामदेव जी छिंबे सन, रविदास जी चम का काम करते सन, सदना जी कसाई सन, सैन जी नाई सन। विचार जसवंत सिंह नेकी, किताब गुरमत मनोविज्ञान। सोने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: ये संसार पौजल है, समंदर दी घुमण केरी, पर वो मालिक आप ही इस विच बेड़ा है ते आप ही चप्पू है। तरन वाला भी वो आप है, वही सब कुछ कर्म कराउन वाला है, और कोई उसते समान नहीं। बिहागड़े दीवार विच नानक पातशाह अपने चौथे स्वरूप विच इस सिद्धांत का प्रगटावा यूं कर रहे ने। आपे पौजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे, आपे करे कराए करता, अवर ना दूजा तुझे सरे। जिस सेवक ने मालिक का नाम सतगुर दी मत भाव गुरमत अनुसार जपया होवे, मौत दा फरिश्ता तां उस सेवक दे चरणां दा दास बन के हुक्म मानता है। चंगी संगत दा प्रभाव भी चंगा है, जिस करके इस पौजल संसार समुंदर तो पार हो सकीता है। जिन जप जप्यो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक भगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार तराया। रागासा विच पंचम पातशाह क्यों बख्शिश करदे ने कि उसके हुक्म विच रह के भगती करन वाला आचरण अते व्यवहार विच भी ठीक हो जाता है। जिस भगत ने गुरु का दर्शाया मंत्र कमाया, वही पौजल तो पार उतरता है। यही आचार यही व्यवहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी, जो इस मंत्र कमावे सो पौजल पार उतारे। उस मालिक दे सिमरन लई कोई विशेष थां कोई विशेष दिन किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस उसकी मेहरबानी दे पात्र बन के उदे दर्शना दी दात मंगो। महादिवस मुहूर्त भले जिसको नजर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। ते आओ इसे पवित्र सिद्धांत नो दृढ़ करवाउंदा होया एक शब्द भाई साहब भाई अमरीक सिंह जखमी दे जथे पासो सरवण करदे हां। ए शब्द पंचम पातशाह जी बख्शिश बाणी बारह महा माज महला पंजवां दी अंतली पौड़ी वजो दर्ज है। तो आओ सरवण करिए शब्द दी टेक है, जिन जिन नाम ते आया तिनके का सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगे।

आई। जत जत जाइए तत दृष्टाए। राग बिलावल विच्चों गुरु नानक पातशाह दी पंचम जोत धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र बोल कि दुनिया दे विच एहो जे बड़े विरले विरले टावे टावे जीव ने जिन्हां ने यह ज्ञान पा लिया। किहड़ा ज्ञान? कि मैं जिथे भी जांदा मालक वसदा है, अकाल पुरख वसदा है। हर किसे लई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इन्हां विच कोई अवस्था का फर्क होएगा। किसी ने सोचिया मैं मंदिर विच्चों रब पा लां, किसी ने मस्जिद विच्चों, किसी ने उसकी नमाज अदा की, किसी ने उसनू पूजा अर्चना की। पर सतगुरु कहिंदे ने कोई विरला विरला इहो जिहा भी है जिसने उसनू मालक नू पाउण दा उपराला किया। जिन्ना चिर साडी होमे है उन्ना चिर असी अपने आप नू वंडिया होया है। पर जदों होमे दूर हो गई फिर जिथे जिथे भी असी झाती मारांगे वो मालक जिहड़ा इक है वो आप ही दिसेगा। तां उस मालक दे नाल जिहड़ा इक है आओ जुड़ना करिए इन्हां पवित्र शब्द दे बोलां दे नाल।

0: कलयुग दे इस कोहर समय अंदर आत्मिक सुखा दी प्राप्ति लई अपने आप नु परमात्मा दे
1: दिल मिले ताइयों गल बनदी आ यार बल यार दा ध्यान होना चाहिदा गल हुई हुंदी जिदे विच कोई गल होवे गल्लां विचों गल दा ज्ञान होना चाहिदा। मैं हां दोस्तो अमनदीप सिद्धू मसलियां दे निकलदे ने हरमन रेडियो ते हल आपां रल मिल करांगे दिल वाली गल। की ने दुनिया भर दियां खबरां की है मौसम दा हाल किस देश ने कीती नुक्ताचीनी किस हीरो नु हो गया।